एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026। समय इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी ये प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद

0: मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शुरू केंद्र है। अब आप कार्यक्रम विवरण में जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

आप सुन रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण। अभी थोड़ी ही देर बाद 6:10 पर श्रोता सुनेंगे चिंतन। आज का विषय रहेगा स्वामी विवेकानंद का विचार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जीवन में एक ऊर्जा भरता है। वंदना आप सुनेंगे 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार होगा 6:45 पर। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे 7:20 पर। आज सुनेंगे आप बालकांड से संकलित एपिसोड संख्या 3। नमस्कार चूरू कार्यक्रम होगा 7:30 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात आप सुनेंगे 8:00। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुन सकेंगे 8:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 9:00। देशगान के लिए समय रहेगा 9:10 का। कार्यक्रम धरा की पुकार आप सुनेंगे 9:15 पर। आज आप सुनेंगे वार्ता बंजर धरती, वार्ताकार आरती सोनी। ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे 9:30 पर। 10:00 हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम होंगे।

11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। उमंग एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 12:00। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर, आज के कलाकार राजेश बाकोलिया। और साथ ही 1:00 हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे 1:05 पर। 2:00 हमारे दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज और 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे 2:30 पर। शाम 5:00 देशकान के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। 5:10 पर आप सुनेंगे रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण। 6:00 आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। देशभक्ति फिल्मी गीत होंगे 6:10 पर। 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे। हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:30 पर। छह बजकर 40 मिनट पर कार्यक्रम होगा जिले की चिट्ठी। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार पुनः आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से 6:45 पर। 7:00 कार्यक्रम होगा खेती और गृहस्थी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 8:00। 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और News@9 आप सुनेंगे 9:00। बाता ही चाले ये कार्यक्रम होगा 9:15 पर। ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:00। शास्त्रीय संगीत के लिए समय रहेगा रात्रि 10:30 का। 11:00 हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

सभी श्रोताओं को रेडियो साथी अंकिता का नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चिंतन। आज का हमारा विषय है स्वामी विवेकानंद का ये कथन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वास्तव में अंतर मन में एक प्रेरणा और ऊर्जा का संचार करता है। कितनी सुंदर बात है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति को आप समय सीमा में या किसी दायरे में बांध नहीं सकते हैं। जब तक आपको उसकी प्राप्ति ना हो जाए, आपको निरंतर प्रयास करता रहना होगा। पहचानना, आलस्य, अपनी क्षमता, इन सब के पीछे इन बातों को हम समझ सकते हैं। अपनी सोई हुई क्षमताओं को पहचानना, आलस्य त्यागने और विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर प्रयास करते रहना, ये शक्ति, ये ऊर्जा हमें ये विचार देता है। जागरूकता, उठो और जागो का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से सचेत हो जाना। ये हमें अपनी कमजोरियों और भटकाव से बाहर निकालता है। शुरुआत हम करेंगे और जागरूक होकर हमेशा उस हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे। निरंतरता की बात करें तो तब तक हमें रुकना नहीं है जब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये राह में अपनी बाधाओं और उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बिना रुके कर्म पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प ही निरंतरता है। लक्ष्य की प्राप्ति में जीवन की सार्थकता, अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में जो हमारी बहुत मदद करेगा, ये वाक्य लक्ष्य की प्राप्ति को पूर्ण करता है। हम अपने जीवन में इस विचार के बारे में अधिक और जानने के लिए अपने भीतर झांकेंगे तो स्वयं इस प्रकार के विवेकानंद के विचारों को अपने भीतर ही पाएंगे। क्योंकि सत्य यही है कि सफलता सिर्फ और सिर्फ निश्चित करने से नहीं मिलती, सफलता के लिए प्रयास बहुत जरूरी है। उठने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ जागना, नींद को छोड़ना नहीं है, बल्कि उठने का तात्पर्य है सचेत होना। जैसे ही हम सचेत होंगे, नींद स्वतः आनी बंद हो जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य दिखाई देगा। उस पल हम ये समझें कि हमारे भीतर इस विचार ने पुनः जन्म लिया है, ये विचार हमारे भीतर भी अग्रसर हो रहा है।

इसीलिए हमें जीवन में उठना है, जागना है, निरंतर प्रयास के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है और रुकना नहीं है तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद का ये विचार कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, आज सुबह सुबह इस विचार को अपने भीतर रखें और इस भीतर रखे हुए विचार को अपने जीवन में उतारें। ऐसा करने से हम हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन अग्रसर होना ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अग्रसर होकर हो सकता है कुछ समय बाद हम इसे छोड़ दें, लेकिन छोड़ने के बाद हम ये भूल जाएंगे कि फिर हमें वापस इसे जगाना है और ये वापस जगाना ही निरंतरता है। निरंतरता के लिए हमें बार बार इसे याद रखना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका लक्ष्य है उसे किसी ऐसे स्थान पर लिख कर लगा दें कि जिससे वो आपको रोज दिखता रहे, तो आप अपने दिमाग से उस लक्ष्य की प्राप्ति को भूल नहीं सकेंगे। तो आप कहीं लगाएं या ना लगाएं, आपके मन के भीतर इसको लगना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस विचार को अपनाने के लिए, इस पर चलने के लिए हमें अपने भीतर निरंतरता और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहने की जिज्ञासा रखनी है। तो श्रोताओं, ये था चिंतन।

श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद गीत बाहर की ये प्रस्तुति अब आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में ब्लैकमेल फिल्म से।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में श्रोता आप सुनेंगे गीत बहार की ये प्रस्तुति तेरी तीसरी मंजिल फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, बालकांड से संकलित एपिसोड संख्या आज आप सुनेंगे 3। कलाकार है मन्ना डे, सुरेश वाडकर, अंजना जॉन। संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड 3।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार चुरू।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम नमस्कार चोरू, रेडियो साथी अंकिता के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार चूरू में आइए बात करते हैं आज के खास दिन की। श्रोताओं, आज 19 जून है। आज गुरु हरगोविंद सिंह जी सिखों के छठे गुरु थे, जिनका जन्म 19 जून 1595 को अमृतसर पंजाब के गुरु की वडाली नामक गांव में हुआ था। आज उनकी जयंती प्रकाश पर्व नानकशाही कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष जून या जुलाई के महीने में मनाई जाती है। मुगलों के अत्याचारों से सिख पंथ की रक्षा के लिए इन्होंने सिखों को शस्त्र विद्या और युद्ध कला में प्रशिक्षण दिया, इन्हें प्रशिक्षित करना शुरू किया। वे युद्ध में शामिल होने वाले पहले सिख गुरु थे। मीरी और पीरी, उन्होंने दो तलवारें धारण की जो क्रमशः सांसारिक शक्ति यानी मीरी और आध्यात्मिक शक्ति यानी पीरी का प्रतीक थे। उन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण करवाया, सिखों की सर्वोच्च अस्थायी सीट जिसे हम कह सकते हैं। उपनाम उन्हें सिख समुदाय में छठे पातशाह, छठे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के इस प्रकाश पर्व पर श्रद्धालु गुरुओं में जाकर विशेष प्रार्थना करते हैं, शब्द कीर्तन का पाठ करते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार चूरू में आपका फिर से स्वागत है। श्रोताओं, चुनौतियां सिखाती हैं आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन का तात्पर्य हम समझ सकते हैं कि स्वयं के बारे में अच्छी प्रकार से समझना ही आत्म मूल्यांकन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को समझ ही नहीं पाते, अपनी शक्तियों को, अपने कार्य करने के तरीके को। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या विद्यमान है, या हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो अपने आत्मसम्मान में या फिर अपने भीतर एक अजीब सा एक वहम बना के जीते हैं, जिसमें वो स्वयं को बहुत महान मानते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आत्म मूल्यांकन जरूरी है। आत्म मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि हम वास्तव में क्या है, और ये आत्म मूल्यांकन हमें चुनौतियां सिखाती है। क्योंकि जब चुनौतियां सामने आती हैं, तो हम अपने भीतर स्थित शक्तियों का प्रयोग स्वतः ही करते हैं अपने बचाव में, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें हमें पता लग जाता है कि हम किस प्रकार और कैसे शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, और कौन कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर है, किस प्रकार की सोच हम विकसित कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि चुनौतियां ही हमें आत्म मूल्यांकन करना सिखाती हैं। जब जीवन या कार्य क्षेत्र में मुश्किलें आती हैं, तब हमें वास्तविक क्षमताओं, कमियों और सुधारने के क्षेत्रों का सही अंदाजा लगता है। जब हम किसी चुनौती में असफल होते हैं या संघर्ष करते हैं, तो हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है। मुश्किल परिस्थितियों से निपटते समय हमें अपनी छिपी हुई प्रतिभा और मानसिक मजबूती का एहसास होता है। झूठे आत्मविश्वास या अत्यधिक निराशा से बाहर हम निकलते हैं, चाहे किस प्रकार का भी हमारे अंदर भीतर स्थित, चाहे वे झूठा आत्मविश्वास हो या फिर अधिक निराशा हो, कुछ ऐसे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और कुछ ऐसे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, दोनों ही स्थितियों में हमें आत्म मूल्यांकन जरूरी है। केवल चुनौतियों का सामना करते हुए ही हम खुद को यथार्थवादी रूप से सीख सकते हैं, मना सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। साथ ही चुनौतियां मूल्यांकन को एक दंड के बजाय सीखने के अवसर में बदल देती है, क्योंकि इस स्थिति में हम अगर हमारे अंदर भीतर जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करना हमें नहीं आता है, तो उसे भी हम सीख जाते हैं। हम अपने भीतर स्थित किसी भी प्रकार का डर है, किसी भी प्रकार का हमें भय है, उस भय को भी चुनौतियां सामने आने पर निकाल सकते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम बार बार कुछ काम करना होता है उसके लिए प्रेरित करते हैं। हम चाहते हैं वो स्वयं इस बात को करे, लेकिन जितना छोटा बच्चा है वो उतना ही डरता है कुछ भी करने से, चलने से। जैसे वो चलना सीखता है, चलते वक्त डरता है, वो उसके लिए चुनौती ही तो है कि उसे डर है भीतर। लेकिन जैसे उसने उसका सामना किया, वो डर उसके अंदर से निकल गया और उसे पता लगा कि नहीं, ये मेरा वहम ही था, मैं कर सकता हूं इस चीज को, मेरे अंदर इसकी क्षमता है। तो ये सभी चुनौतियों का सामना करने से हमारे भीतर स्थित जो हमारी शक्तियां हैं वो पता चलती हैं। चुनौतियां हमें सिखाती हैं अपना आत्म मूल्यांकन करना, इसलिए हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए।

गीत की बात श्रोताओं, अब बात करते हैं हम घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। इस विषय पर हमारे जो घरेलू पर्यटन है उनको हमें बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। हम इसमें किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी या हमारी भागीदारी निभा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं श्रोताओं। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना वास्तव में हम सभी का सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक हक बनता है। इससे न केवल देश की संस्कृति को मजबूती मिलती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर छोटे जो व्यवसाय और कारीगरों को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। श्रोताओं, विदेशी यात्रियों के बजाय या विदेशी यात्राओं के बजाय अपने ही राज्य या देश में छिपे हुए प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा हम कर सकते हैं। हम इसमें योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार यात्रा के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प कारीगरों और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों की खरीदारी करने से और इसमें सीधे कारीगरों को लाभ मिलने से हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। बड़े होटलों के बजाय होम स्टे में ठहर सकते हैं। इससे हमें और हम उनको स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा और ग्रामीणों की

आय बढ़ेगी। दोनों ही स्थितियों में ये लाभदायक होगा। श्रोताओं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक स्थलों को साफ रखें, प्लास्टिक का उपयोग न करें। ऐसे स्थानों पर अगर हम घूमने जा रहे हैं तो हम इन बातों का ध्यान रखें कि हम वहां गंदगी ना फैला के आएं। अगर हम सकारात्मक प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो अपनी यात्रा के अनुभव, तस्वीर और स्थानीय व्यंजनों को सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं, जिससे और लोग भी इसके लिए ललायित हों, साथ ही वहां जाने के लिए उनका मन बन सके। अगर हम इसके प्रमुख लाभों की बात करें तो हम पर्यटन से जुड़े गाइडों, टैक्सी चालकों और छोटे दुकानों को रोजगार मिल सकता है। अपनी संस्कृति को करीब से समझने और देश की विविधता का सम्मान करने का अवसर हमें मिल सकता है। घरेलू पर्यटन के बढ़ते इस देश की जो हमारी जीडीपी है ये मजबूत होगी। इससे हमें आत्मनिर्भर भारत जो है इसमें बनने में और ज्यादा अग्रसर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है।

श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार शुरू में चलते चलते आपको योजना अटल पेंशन योजना के बारे में बताते हैं। श्रोताओं, अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीबों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई एक गारंटीकृत पेंशन योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 1000 से 5000 तक की निश्चित पेंशन मिलती है। इसकी आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल इसमें हो सकता है। इसकी पेंशन की राशि आपकी उम्र और निवेश के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 मासिक पेंशन मिलती है। पारिवारिक सुरक्षा इसमें रहती है। ग्राहक की मृत्यु के बाद उनके जो पति या पत्नी का को आजीवन वही पेंशन मिलती रहती है। पति पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद जमा किया गया पूरा फंड नॉमिनी लगभग 1.7 यानी 1,07,000 और 8,05,000 तक पेंशन स्लैब के अनुसार जो वापस कर दिया जाता है। पात्रता की अगर बात करें तो आयकर दाता इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होते हैं। श्रोताओं, पेंशन की रकम आपके निवेश की शुरुआत करने की उम्र पर निर्भर करती है। कम उम्र में जोड़ने पर कम योगदान देना होता है। इस योजना में निवेश मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप से किया जा सकता है। अपना खाता खोलने के लिए किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं।

आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात 8:15 पर। श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी

0: नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची, वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते

0: हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message "Bonjour Modi" or

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं

श्रोता भी सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय दिन के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के संचालन के लिए प्रदेश भर में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश में सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारियों वाले लघु उद्यम हैं। डॉ. मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 जगहों पर होंगे।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो

0: चार गुना बड़ा हो गया है।
1: 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल पारदर्शी पानी की बोतल और प्रवेश पत्र रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ही ले जा सकते हैं। कलावा, पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक और पूरी बाजू के कपड़े पहनने वाले अभ्यर्थियों को सघन जांच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारी आभूषण और धातु की वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरी ओर परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पेपर लीक जैसी किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्रदेश भर में विशेष टीमें तैनात की हैं। ये टीमें कोटा, सीकर और जयपुर जैसे प्रमुख कोचिंग शहरों में शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों, पीजी और सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। पांचना बांध से सिंचाई जल के गतिरोध को सुलझाने के लिए प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं। इस मुद्दे पर आज भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक संयुक्त बैठक रखी गई है। बैठक में सभी पक्षों से चर्चा कर विवाद का हल निकालने और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर सहित सवाईमाधोपुर के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहरों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से रखी। गौरतलब है कि करौली के किसान प्रतिनिधि महापंचायत में व्यस्त होने के कारण कल की बैठक में भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए आज फिर से बैठक रखी गई है। प्रदेश के लूनी बांध का नाम अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा जाएगा। जल संसाधन राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ब्यावर के आशापुरा माता धाम में आयोजित एक समारोह में ये घोषणा की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इतिहास में वीरों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट आई है और हीट वेव से पूरी तरह राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के वायुमंडल में बने नए सिस्टम से हवाओं की नमी में तेजी से बदलाव आया है। इससे आज राज्य के सभी संभागों में बारिश के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह हल्की बरसात की संभावना है। इस बीच कल दोपहर बाद चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में मौसम अचानक बदला और तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओले भी गिरे। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रभारी मंत्री और अधिकारी कल ही अपने निर्धारित जिला मुख्यालयों पर पहुंच जाएंगे। इस बीच योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। जगह जगह योग शिविरों के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर योगा चैंपियंस के साथ योग किया। इधर हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि आज शहर के विश्व प्रिय शांति पार्क में सामूहिक योगाभ्यास किया गया।
2: शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित जनों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन

0: वृक्षासन, भुजंगासन एवं श्वासासन जैसी महत्वपूर्ण योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। प्रशिक्षकों ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों का प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित योग अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तनाव दूर होता है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के पारदर्शी संचालन के लिए कोचिंग शहरों में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश के सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देशगान।

0: आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम धरा की पुकार। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, विषय है बंजर धरती, वार्ताकार है आरती सोनी।
1: श्रोताओं, धरा की पुकार का एक और अंक लेकर एक बार फिर हम रूबरू हैं आपसे। विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, अपने घर परिवार के साथ आप पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। श्रोताओं, दुनिया भर में बंजर होती धरती आज मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और अगर इसकी रोकथाम नहीं हुई तो अगले 60 साल में पूरे भारत की मिट्टी के बंजर होने का खतरा मंडरा रहा है। अब तक हम भारत की 29% जमीन को अनुपादक बना चुके हैं या इसकी उत्पादन क्षमता नष्ट कर चुके हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर में से करीब 9.64 करोड़ हेक्टेयर जमीन की मिट्टी अपसरित हो चुकी है। इसका अर्थ है कि ऐसी जमीन की मृदा की ऊपरी परत इतनी नष्ट हो चुकी है कि वो खेती के लायक रही ही नहीं। किसानों समेत सभी भारतवासियों को इस खतरे से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जिस रफ्तार से देश भर की मिट्टी की ऊपरी और उपजाऊ परत का नुकसान हो रहा है, उस हिसाब से अगले 60 वर्षों में ही यानी साल 2085 तक पूरे देश में उपजाऊ मिट्टी वाली खेती खत्म हो जाएगी और भारत बंजर जमीन वाला देश बन जाएगा। ये तथ्य बेहद डरावने हैं, लेकिन पूरी तरह से वैज्ञानिक भी हैं। ये हमें बताते हैं कि आधुनिक विकास की आपाधापी में हम पर्यावरण को जैसा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका अंजाम कब और किस रूप में हमारे आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। ताजा आंकड़ा ये है कि अब तक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर में से करीब 9.64 करोड़ हेक्टेयर जमीन की मिट्टी अपसरित हो चुकी है। अपसरित मिट्टी का मतलब है कि देश के इतने क्षेत्रफल की मृदा की ऊपरी उर्वर परत इतनी नष्ट हो चुकी है कि वो खेती के लायक रह ही नहीं गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब तक हम 29% जमीन को अनुपादक बना चुके हैं, उसकी उत्पादन क्षमता को नष्ट कर चुके हैं। उपजाऊ मिट्टी के नष्ट होने की प्रवृत्ति का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये चुनौती विश्वव्यापी है। वस्तुतः वैश्विक तौर पर तो बंजर होती भूमि का दायरा कहीं ज्यादा भयानक तरीके से विकराल हो रहा है। विश्व खाद्य संगठन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौते की ओर से जारी ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 40% से ज्यादा उपलब्ध भूमि अनउर्वर यानी बंजर हो चुकी है। यदि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बहाल करने की दिशा में मानवता ने युद्ध स्तर पर कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की आधी आबादी को गंभीर खाद्यान्न संकट से जूझना होगा। इसकी मुख्य वजह ये भी है कि हाल ही विश्व की आबादी 8 अरब की संख्या को पार कर चुकी है। 12 साल पहले ये 7 अरब थी और उससे भी 12 साल पहले थी 6 अरब। अब यदि 11-12 साल कहीं वक्त इंसान को 8 से 9 अरब तक पहुंचने में लगे तो 2035 के आसपास दुनिया की आबादी 9 अरब होगी तो सन 2045-46 के आसपास 10 अरब। ऐसी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए वैश्विक स्तर पर जितने खाद्यान्न उत्पादन की अपेक्षा होगी उसे खेती योग्य उपजाऊ जमीन के सिकुड़ते क्षेत्रफल से पूरा करना बेहद कठिन होता चला जाएगा। इसीलिए विशेषज्ञों ने वैश्विक स्तर पर आधी आबादी के लिए भोजन और कुपोषण के संकट की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार उपजाऊ मिट्टी वाले खेतों के बंजर के रूप में

तब्दील होने के लिए भूमि का अतिशय दोहन, परंपरागत कृषि पद्धतियों में रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता इस्तेमाल, खनन और वनों की कटाई जैसे कारक जिम्मेदार हैं। चुनौती ये भी है कि यदि मौजूदा रफ्तार से ही बंजर विस्तार जारी रहा तो न सिर्फ मानव आहार श्रृंखला चरमरा जाएगी बल्कि धरती की जैव विविधता में भी ऐसा पतन होगा कि अनेक महत्वपूर्ण जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। ऐसी रिपोर्ट्स और विभिन्न स्तरों पर हुए वैज्ञानिक अध्ययनों को देखते हुए ही तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मृदा क्षरण को रोकने और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की दिशा में अनेक पहल की हैं। इनमें ग्रामीण स्तर पर रासायनिक उर्वरकों से मुक्त जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के अतिरिक्त शहरी वृक्षारोपण में बढ़ोतरी और वनों की कटाई को सख्ती से रोकने जैसे उपाय शामिल हैं। किसानों को भी मिट्टी की सेहत का ख्याल अपने परिजनों के स्वास्थ्य की तरह ही रखना होगा। भारत में भी मिट्टी की सेहत का ख्याल रखने से जुड़ी कोशिशों को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण जैसी नीति का संबंध भी जमीन की उर्वरा के संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे प्रयासों से सूखा, बाढ़, जंगल की आग, रेतीली आंधी और धूल आदि प्रदूषण संबंधी समस्याओं की कुछ हद तक रोकथाम संभव है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में सदस्य राष्ट्रों ने भी 1 अरब हेक्टेयर अपसरित भूमि या बंजर जमीन को सुधारने का निर्णय लिया है। भारत में वर्ष 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर अपसरित भूमि को सुधारने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। संपूर्ण भू सुधार योजना का लक्ष्य मिट्टी में जैविक तत्वों और सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा में निरंतर वृद्धि करना है। इसीलिए भारत में शून्य बजट कृषि पद्धतियों यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। टिकाऊ खेती के इस तरीके के प्रति किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। श्रोताओं, पंच तत्व से बना है हमारा ये शरीर और इन्हीं पंच तत्वों में से एक तत्व है धरती, यानी ये हमारी मिट्टी। इस मिट्टी को संरक्षित करके हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न केवल धरती का संरक्षण कर रहे हैं, न केवल पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि हम अपने जीवन का संरक्षण कर रहे हैं। वसुंधरा पर स्वास्थ्य शक्ति का बस आधार दिखाई दे, जड़ी बूटियों औषधियों की बस भरमार दिखाई दे, जागो अब तो जागो मानव, यत्न करो कोई ऐसा कोई प्राणी इस धरती पर ना बीमार दिखाई दे।

दुनिया भर में भूक्षरण और मरुस्थलीकरण बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के तौर पर उभर कर आए हैं। सामान्यतः मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें

शुष्क भूमि अपनी उत्पादकता खोती जाती है और मिट्टी बंजर हो जाती है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में जमीन की पौधों को सहारा देने की शक्ति क्षीण हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव मिट्टी के अन्न उपजाने की क्षमता पर पड़ता है। इससे लोगों की आजीविका तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों का गहराता संकट लोगों को भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। ये चिंताजनक इसलिए भी है कि मरुस्थलीकरण जल प्रबंधन प्रणाली और कार्बन के भंडारण पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। हालांकि ये बात दिगर है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया लंबे समय में घटित होती है, परंतु चिंताजनक बात यह है कि इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जो पर्यावरणविदों को भी परेशान कर रही है। इसरो द्वारा हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जल क्षरण है। करीब 10.98% क्षेत्र में मरुस्थलीकरण जल क्षरण की वजह से होता है। इसके बाद वनस्पति क्षरण का नंबर आता है। वनस्पति क्षरण के कारण 9.91% क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा वायु क्षरण, लवणता में कमी, मानव निर्मित बसावट क्षेत्र में और अन्य कारणों जैसे त्रस्त जल भराव, अत्यधिक पड़ना, बंजर और चट्टानी भूमि क्षेत्र आदि वजहें भी बढ़ते रेगिस्तान के लिए जिम्मेदार तत्व हैं। खेती योग्य जमीन को बंजर भूमि बनाने में मानवीय कारक भी कम नहीं रहे। बढ़ती आबादी के लिए आवास उपलब्ध कराने और अवैध खनन के चलते हर साल हजारों हेक्टेयर भूमि बंजर हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 1,20,00,000 हेक्टेयर जमीन मानव निर्मित कारणों से रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। दुनिया की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 1/4 हिस्सा अत्यधिक बंजर हो चुका है। शुष्क भूमि में वर्षा बहुत कम और अनियमित होती है। एक अध्ययन के बाद सामने आया है कि भूक्षरण की वजह से देश को $48.8 अरब सालाना की चपत लग रही है। यह 2014-15 में भारत की जीडीपी के लगभग 2.08% के बराबर था, जबकि उसी वर्ष कृषि और वानिकी क्षेत्रों के सकल घरेलू मूल्य से यह 13% से भी अधिक है। वास्तव में तेज होती मरुस्थलीकरण की समस्या पूरी दुनिया के लिए विकराल समस्या बन गई है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी जैसी विकसित सभ्यता के विनाश का कारण भी सूखे और मरुस्थलीकरण को ही माना जाता है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव समस्त प्राणी जगत, पर्यावरण, जलवायु और मृदा पर पड़ता है। यह एक ऐसी बहुआयामी समस्या है जिसके जैविक, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष हैं। इसलिए इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ हमें भी व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास करने होंगे।

कार्यक्रम धरा की पुकार में अभी आपने सुनी वार्ता, विषय रहा बंजर धरती, वार्ताकार आरती सोनी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रही हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद आपके ईमेल्स पर आधारित संगीत का कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी अंकिता, आपके ईमेल्स और आप ही के पसंद के गीतों के साथ।

श्रोताओं, पहला जो गाना आपने सुना कार्यक्रम का, मोहरा फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में इस गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी रहे ग्राम पंचायत सिरसला फवारा चौक जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची, सोमल कार्तिक, सचिन चौहान, रामसरा वाले, इनका समस्त सोनगरा परिवार, साथ ही ददरेवा से गंगा शिम्पा, उषा अवनी, अक्षय, इन सभी ने भी इस गीत को पसंद किया। हमारे साथी हैं नातापा पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी विपुल कामड़े, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान आशीष, इसी गीत को पसंद किया हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने, साथ ही हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, बब्बू और डब्लू ने। बहुत ही प्यारा सा गीत श्रोताओं अभी आपने सुना, अगली पसंद आपको सुनवाते हैं और बाद में बताएंगे कि किस श्रोताओं ने इनको पसंद किया है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
7: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम आपकी पसंद में हाजिर है हम फिर से आपके ईमेल्स के साथ। अभी गीत आपने सुना था चांदनी फिल्म का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी रहे महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोणे, योगिता, प्रियाली, पार्थ, पूरा इनका हांगोणे परिवार, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला, गीतिका, भानु प्रकाश, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाटोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू गुड्डू, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, इन सब ने पसंद किया था चांदनी फिल्म का गीत। अब आप सुनेंगे अगली प्रस्तुति जो हमारे साथियों ने पसंद की है आनंद फिल्म से, बोल है कहीं दूर जब दिन ढल जाए। पसंद करने वाले हमारे साथी हैं अमालियान सरना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम मुस्कान, जीव में जैन, दिग्दर्शन साथ ही नागर कोहार जिला, राजानंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या, कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद असरुल, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। आनंद फिल्म का ही गीत पसंद किया है कोमा खान छत्तीसगढ़ से, प्रज्ञानंद देवानंद देवांगन, नंदनी प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, पंजाब से परविंदर सिंह रंधावा, लखन पाल, रूबल रंधावा, इन सब ने पसंद किया है आनंद फिल्म का ये गीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आपके ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आपके द्वारा भेजी गई आपकी पसंद को शामिल करते हैं। देखते हैं अगला जो हमारे पास ईमेल हमें मिले हैं वो कौन से हैं और किस फिल्म के गीत के लिए है। अमर प्रेम फिल्म का गीत सुनना चाहा है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्राव्या, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा कपिल पूजा ईशान, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका वाणी, खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा लाडो कोयल नानक चंद्र रोहतक से पीयूष सिक्का गुड्डू डुग्गू भाविका सिक्का, फातेमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया साजिद शाहिद शेख, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव गरिमा शर्मा। अमर प्रेम फिल्म का गीत ही सुनना चाहे मुरादाबाद दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह, मोताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला गोरी सुरलकर, इन सब ने सुनना चाहा है अमर प्रेम फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
4: श्रोताओ, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जो आप लोगों ने हमें फरमाइश के तौर पर भेजी है, गंगा जमुना सरस्वती फिल्म के गीत के लिए पसंद करने वाले हमारे साथी हैं मेहर नगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से।

अभिजीत भाणकर, राही सरिता, प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से पनीता सिद्धार्थ अर्जुन टुक टुक, खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास रोशनी और शगुन, पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनाली, सोनम आशीष। इसी गीत को पसंद किया है कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सारिका ने, बागपत यूपी से संजय ढिंगिया, नमन अपार ने। और इसी फिल्म के गीत को सुना चाहे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल ने। पद्मा टॉकीज नेपाल नगर से मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं FM चुरू से, तो हमें ईमेल जरूर भेजें manbhavanchuru@gmail.com पे। लेकिन कार्यक्रम का नाम आपकी पसंद जरूर लिखें।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 107 MHz पर हम बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को तो मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: तुझे

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूं मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: तो यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मिट्टी 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत के बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाने?
1: नहीं नहीं मैम, चलो नहीं नहीं पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नईम मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सीपी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, तो हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगता
0: जी
1: है।
0: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ हैं। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की, तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे मालूम
0: वो,
1: जी आपको पता है ये पहलगाम
0: हाँ,
1: कश्मीर में पड़ता,
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के
1: बहुत ठंडा
0: मौसम
1: पानी।
0: में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए बहुत बहुत

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन

0: गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे को रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 67-62 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे
1: वाल वाले रेडियो,
0: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ रिपेयरिंग करता था, और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ 5 वाल 3 वाल 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, आप तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा, अब तो सुनना तो और ज्यादा होगा, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन है।
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप?
1: हाँ मोबाइल।
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी।
1: दिक्कत होती थी, हाँ इधर से उधर तक नहीं लगता था।
0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम तमाम मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक मैडम, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलेंगे।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: और मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: चलता है फिर तो।
0: वाह वाह वाह, आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूं होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूं होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं का चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार हैं इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने फिल्म।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है, आज धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा, मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे आप गुनगुनाएंगे तो।
1: चलिए, आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।
2: इतना तो कह दो हमसे।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी। गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, जहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही है, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है, और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर।
0: हाँ,
1: लेकिन
0: हाँ, हाँ।
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना। वो किसी के
1: हाँ,
0: डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल
0: आजाद
1: बिल्कुल
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन
1: बिल्कुल
0: होता होगा।
1: बिल्कुल ममता जी, हम
0: हाँ।
1: प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है, और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर लगता
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: मोरों के बीच में गांव में
0: हाँ
1: भी रहते
0: हाँ
1: थे
0: हाँ
1: और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है,
0: ये सब?
1: लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। और
0: अच्छा,
1: वैसे देखा जाए तो वो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गौरैया आती है क्योंकि?
1: बिल्कुल हाथ नहीं, चक्री का या गौरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में।
0: हाँ।
1: मेरा गांव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गौरैया बहुत है,
0: हाँ।
1: अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं क्योंकि?
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते है, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये
1: जी
0: जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने
1: जी
0: श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है,
0: हाँ।
1: जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है, और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है घर
1: नहीं
0: के?
1: नदी तो साबरमती नदी है, और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी, और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे वो भी आपको पता ही होगा ना
1: जी। बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते हैं, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती है, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे के लुक को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद का, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन की गुठलियाँ होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है, गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना, ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गांव में हैं तो घर में जैसे कि गाय है, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि गड्ढा खन के मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए, खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ करता था
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना, उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी दीदी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 28670288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के प्रोग्राम। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष

अब से कुछ ही पलों बाद दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन में 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार होंगे राजेश बाकोलिया और उनके साथी। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे दिन में 1:00 और 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जागरण।

आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2 बजे और दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे देशकान के साथ। 5:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण। शाम 6 बजे हिंदी में, 6:05 पर अंग्रेजी में और 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। प्रादेशिक समाचारों में शाम 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी जयपुर से। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से ही जिले की चिट्ठी, खेती और गृहस्थी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी चूरू से शाम 7 बजे। रात्रि 8 बजे होगा फिल्म संगीत का प्रोग्राम गुलदस्ता।

आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक रिले किया जाएगा रात 8:45 पर और रात 9 बजे News@9 बाता ही चाले। ये कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर और रात 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी राजस्थानी गीतों का प्रोग्राम गोरबंद। रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत आकाशवाणी चूरू से। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। दिन के 11:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

FM 110.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

तेरा जादू चल गया। प्रोग्राम का पहला गीत अभी आपने सुना। इस फिल्म से आवाजें थी सोनू निगम और चित्रा के। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत था इस्माइल दरबार का।

पहली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे एमएम करीम, सोनू निगम और श्रुति सारोलीकर की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार और संगीत था एमएम करीम का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से चित्रपट संगीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में गर्दिश फिल्म का गीत। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार थे आरडी बर्मन। श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से चित्रपट संगीत। आपको पहले भी कहीं देखा है, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे जमीन आसमान फिल्म का गीत। अनजान का लिखा गीत था और संगीत था आरडी बर्मन का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत FM 100.7 MHz पर।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरेब फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है जतिन ललित का। प्रोग्राम है चित्रपट संगीत।

ये था लता मंगेशकर और हरिहरन के साथ साथियों की आवाज में हुतुतु फिल्म का गीत। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीतबद्ध किया विशाल भारद्वाज ने।

यह है आवाज कविता कृष्णमूर्ति की और साथ देंगे सुखविंदर सिंह। ताल फिल्म का ये गीत है जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है ए आर रहमान का।

चित्रपट संगीत का ये अंतिम गीत आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में तकदीर फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
1: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
1: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
1: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
1: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
1: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
1: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओ, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा

0: यहां से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नाव पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CITNCRT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था, थोड़ा सा फंबल था, कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की।

आज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर

रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस

तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चुरू केंद्र से किया गया।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं राजेश पाकोलिया और उनके साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार थे राजेश कुमार बाकौलिया और उनके साथी। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 63 लाख से अधिक लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़ चुके हैं, जिनमें करीब 30% महिलाएं शामिल हैं। आज के कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत पहली बार सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस अवसर पर देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राज्य में जयपुर सहित 7 स्थानों पर इन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर

0: विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और आमजन से स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। गौरतलब है कि अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कुल 10 पदक जीते हैं। इन पदकों में 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को बीकानेर और जयपुर प्रवास पर रहेंगे। श्री वैष्णव रविवार सुबह बीकानेर पहुंचेंगे, जहां वे करनी सिंह स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे बीकानेर के लालगढ़ से गुजरात के साबरमती के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री जयपुर पहुंचेंगे, वे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मेगा कोचिंग टर्मिनल उद्घाटन करेंगे तथा राजस्थान के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को भी रवाना करेंगे। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा होर्मूज जलडमरू मध्य को पार करने के बाद गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। ये कतर से रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लेकर आए हैं। ये पोत आज सवेरे दाहेज एलएनजी टर्मिनल पर पहुंचा। ये कार्गो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक दबाव के बीच देश भर में एलएनजी की उपलब्धता को मजबूत करेगा और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। सरहदी जिले जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों का सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी राजस्व गांवों और ग्राम पंचायतों में ये विशेष सर्वे कराया जाएगा।
1: जितने भी 0 से 50 किलोमीटर की रेंज के रेवेन्यू विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पर एक सर्वे होना है, जिसमें एनक्रोचमेंट की दृष्टि से यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसका फंडिंग कहाँ से आया है, एनक्रोचमेंट है तो किस तरीके का एनक्रोचमेंट है, आबादी की क्या स्थिति है, खेती की क्या स्थिति है, वहाँ हमारे कितने पशुपालक हैं, क्या हमारी कैटल कौन सी वहाँ पर ज्यादा आबाद है, तो इस तरीके का एक जनरल सर्वे है जिसमें मुख्य हमारा ध्यान रहेगा एनक्रोचमेंट की स्थिति पर।
0: 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 1 और 2 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर कल शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को सभी तैयारियां तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस है। इसका आयोजन केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार संयुक्त रूप से कर रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दिन का 1:05 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाले तमाम श्रोता बहनों का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आज फिर एक बार आपके साथ हाजिर हूं मैं महिमा शर्मा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। बहनों, आज बहुत दिनों के बाद आपसे हम बात कर रहे हैं और आज है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हम आपसे आज

बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि जो भी हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, व्यस्तता वाली जिंदगी है, इसमें से हम कैसे अपने लिए समय निकालें, और कैसे जब हम खाना बनाते हैं या फिर घर किचन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ खराब हो गई होती हैं तो उनको फेंकना पड़ता है, कुछ ऐसी होती हैं कि खराब होते हुए भी हम उनको कैसे काम में लें, और जो उसमें से भी बच जाता है उसको भी अच्छे से कैसे काम में लें, क्योंकि हर चीज में अपने एक अलग गुण होते हैं, उन गुणों को हम कैसे अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे गुणों से भरपूर चीजें जो है वो खिलाएं। साथ ही साथ गर्मियों में भी मन करता है कि कुछ हम ऐसा खाएं, लड्डू खाएं, लेकिन वो सर्दियों वाली याद करके तो हमें पसीना सा आने लगता है कि वो सब चीजें तो हम गर्मी के अंदर नहीं खा सकते। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि चावल के जो लड्डू हैं वो हम गर्मियों में खा सकते हैं। तो इन सभी बातों चर्चाओं पर हम थोड़ा सा समय निकालकर बात आपसे बहुत सारी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

बहनों, हमने बात की थी कि अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी, व्यस्तता भरी जिंदगी में से कुछ समय हम अपने लिए कैसे निकालें। समय निकालना हमें एक नामुमकिन सा ही चीज लगती है कि समय निकलना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी भारी भरकम या फिर व्यस्ततम जिंदगी में ऐसा सोचते हैं, ऐसी दिनचर्या हमने खुद ने ही ऐसी बना रखी है कि उसमें सबके लिए समय होता है, लेकिन खुद के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल सा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम रोज सोचते हैं कि हम 1 घंटा योगा करेंगे, हम 15 मिनट वॉक करेंगे, 15 मिनट हम ये करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम शुरुआत छोटे से करें। हम वैसे भी देखते हैं या बताते भी हैं या हम सुनते भी हैं कि कोई भी शुरुआत होती है वो छोटे से होती है। छोटे से शुरुआत जो की गई होती है वो आगे चलकर बड़ा रूप लेती है। वैसे ही हम अपना समय जो है वो छोटे से निकालें। 5 मिनट 10 मिनट से हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि हम वो कर पा रहे हैं तो उस समय सीमा को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो टाइम मिलता नहीं है, टाइम बनाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो शुरुआत क्यों ना हम 10 मिनट से करें। हम शुरुआत अपनी दिनचर्या की सुबह उठने से लेकर करते हैं। तो जब हम उठते हैं तो 5 मिनट के लिए हम सिर्फ बैठ जाएं, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। उसके बाद जब हम नहाना शुरू करते हैं, वहां से लेकर हम जब तक सोते हैं, हम 2-2 मिनट 1-1 मिनट भी अगर अपने लिए पूरे दिन में निकाल पाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, थकान लग रही है, तो हम 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ सकते हैं। किचन में हैं, थक जाते हैं खड़े खड़े, तो क्यों ना हम अपने मन पसंद का गाना लगाएं। उस गाने को सुनने के साथ साथ हम काम करें। ये नहीं कि हम अब तक सब बच्चों की पसंद, बड़ों की पसंद, पति की पसंद ही करते आते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी पसंद को हम भूल ही जाते हैं। तो अपनी पसंद को पहले तो याद करें, उसमें भी हमारा टाइम जो है बहुत अच्छा हो जाता है, हमारा मानसिक संतुलन सही रहता है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उस चीज को जब हम याद करते हैं, एक तरीके से हम पिछली जिंदगी में चले जाते हैं, और वो पुरानी यादें जब ताजा होती हैं तो हम उनको वापस गुनगुनाने लगते हैं। तो वही गाने जो हैं, आजकल हमारे पास में स्मार्टफोन है तो हम क्यों ना उनके ऊपर कोई वही गाना लगाकर उसको गुनगुनाएं और सुने। वैसे ही हमें क्या पसंद था, डायरी लिखना था, पढ़ना था, लिखना था, डांस करना था, तो छोटी छोटी जो आदतें हमारी बचपन में होती है या फिर कुछ बनाना होता है, कुछ मिट्टी से खिलौने बनाना होता है, कुछ भी है, जो भी हम ड्राइंग करते थे बचपन में, तो वो सारी चीजें हम वापस अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ अब प्रोडक्टिव ही करें, या जैसे कि कुछ भी किया तो उसका कुछ सार निकलना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसका तो बहुत काम में आने वाली चीज है वो ही हम बनाएं। नहीं, हम ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी टाइम पास कर सकते हैं जो कि हमारे लिए होता है। फिर जब भी हम किसी चीज पर काम करते हैं तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे लिए समय नहीं है, या हम ये समय नहीं निकाल सकते, तो ऐसा नहीं है, ये गिल्ट

जो है अपने मन से निकाल के फेंक देना चाहिए। हम सबके लिए कर रहे हैं तो अपने लिए क्यों नहीं, हम सबके लिए काम करें, हर चीज़ पे फोकस करें, लेकिन थोड़ा सा फोकस खुद के ऊपर अगर कर लेंगे तो हमारा जो दिनचर्या है वो सुधरेगी, हमारा मानसिक और हमारा शारीरिक दोनों स्वास्थ्य जो है वो सही रहेंगे। तो सिर्फ भागते रहना करते रहना ही जिंदगी नहीं होती, खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी होता है।

बहनों, अभी तक हमने बात की कि टाइम को हम अपने लिए कैसे निकालें, किस प्रकार हम 5-5 मिनट या थोड़ा थोड़ा करके टाइम कैसे निकालें। लेकिन जब टाइम अगर हमारे पास है, एक समय होता है जब हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से भरे रहते हैं, माता पिता की होती है, बच्चों की होती है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद में बच्चे अपने अपने लाइन पकड़ लेते हैं, वो बिजी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, और हम जो हैं वो एक ऐसे रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास समय भी होता है लेकिन क्या करें, इस उधेड़ बुन में ही हम अपना समय निकाल देते हैं, या फिर कई बहनें तो तनाव, डिप्रेशन इस और चली जाती हैं, या फिर अपनी लाइन जो है वो बातों में, इधर उधर टाइम पास करना, टीवी देखना, मोबाइल देखना। तो कुछ प्रोडक्टिव की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम कुछ प्रोडक्टिव भी कर सकते हैं अपने पुराने शौक, जैसे किसी को लिखना पसंद है तो वो डायरी लिख के अपनी कहानियाँ जो हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको एक हम अलग तरीके से अगर अपनाएं तो अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। जो कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, हम उनको पोस्ट करें, छोटी छोटी पोस्ट जो है वो हम रोज़ डालें, अपनी जो लिखी हुई पुरानी डायरी है उसको निकालें और उसको दोबारा लिखकर हम रोज़ एक कहानी या कविता जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, उस पर हमारे लाइक बहुत सारे आ सकते हैं या फिर हमें पॉपुलैरिटी मिल सकती है। अपना शौक तो पूरा होता ही है, आगे भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में हम देख सकते हैं कि लिखने के अलावा डांस है, सिंगिंग है, या फिर क्राफ्ट है। क्राफ्ट की बहुत सी ऐसी पुरानी क्राफ्ट की चीज़ें हैं जो कि आज के समय में किसी को आती ही नहीं है, तो वो प्रोडक्टिविटी काम आती है, हमारा शौक पूरा होता है, समय जो है वो हमारा पास हो जाता है कि हमारा समय जो है व्यर्थ नहीं जा रहा, और हमारा मन भी लग जाता है और इनकम भी शुरू हो जाती है। तो इस इनकम का कोई मुकाबला नहीं है बहनों, जहाँ पर शौक भी पूरा होता है, इनकम भी होती है और समय जो है वो भी आसानी से निकल जाता है। तो और डिजिटल दुनिया है तो हमारे बहुत सारी ऐसे गाने हैं, हम गाने गाकर अपने शौक पूरे कर सकते हैं। कुकिंग जो हर महिला को आती है, अगर हम बहुत ज़्यादा दो लोग रहते हैं, बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेट हैं, हॉस्टल चले गए हैं, कमाने चले गए हैं, तो कुकिंग जो है अपना शौक है, उसको हम घर पे नहीं खाते हैं इतना सब कुछ, लेकिन हम बनाकर बच्चों को भेज सकते हैं या फिर अपना शौक पूरा कर सकते हैं, अपना कुकिंग जो एक वीडियो बना ले, अपना एक चैनल बना ले, उसके थ्रू हम रोज एक नया इस डिश के साथ में एक वीडियो जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे हमारी पॉपुलैरिटी होगी, हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा उसके देखने में आएंगे, और हमारे आसपास सिखाने के लिए भी हम क्लास खोल सकते हैं, तो बच्चे जो है वो सीखने के लिए आते रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी लाइन है बहनों जहाँ पर हम अपना टाइम जो है स्पेंड करना करके उसको प्रोडक्टिव भी कर सकते हैं।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: बहनों, एक बार हमने बात की थी कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ था कि पनीर बनाते हैं हम घर पे, या फिर कई बार होता है कि अभी गर्मी का मौसम है, सुबह हमने अगर दूध गर्म किया और दोपहर में भी अगर कई बार गर्म करते हैं तो दूध में एक खट्टी स्मेल आने लगती है। तो कई बहनें, ऐसा भी होता है कि उसको हम फेंक देते हैं या कोई काम में नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उसको हम थोड़ी सी खटाई डाल के, या तो टॉटरी होती है या नींबू होता है तो वो अगर हम उसमें डाल दें तो वो पूर्णतया फट जाता है, और फटने के बाद में हम पनीर अलग कर लें और पानी अलग कर लें। पनीर के साथ हम बहुत सारी डिश बना सकते हैं, ये हमारी बहनों को सबको पता है कि पनीर को काम में कैसे लेना है और बच्चों

का तो मन पसंद होता है, तो हम पनीर को किसी भी रूप में काम में लें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पनीर के बाद जो बचा हुआ पानी होता है उसको हम अधिकतर जो है फेंक देते हैं, हम उसको वेस्ट समझते हैं कि ये खराब पानी है, ये कोई काम नहीं आ सकता। कुछ बहनों को पता भी होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं आज बता देती हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे गुण भी होते हैं और इसको हम पानी को काम में भी ले सकते हैं। गुणों की अगर बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन और मिनरल्स का यह स्रोत भरपूर होता है इसके अंदर। इसमें कुछ मात्रा प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं। पाचन में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, हल्का होता है क्योंकि इसलिए पचने में बहुत ही आसान होता है। हाइड्रेशन की बात करें तो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। व्यायाम करने वाले जो होते हैं उनके लिए अतिरिक्त पोषण जो होता है उसका ये स्रोत है। उसको हम अगर एक गिलास भी होता है तो उसको फेंके नहीं, उसको हम पी भी सकते हैं, कहने का मतलब यही है। और बात करें आटा लगाने की तो आटा तो हम इससे लगा ही सकते हैं। त्वचा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे हम अपने बाल जो है, क्योंकि इसमें खटाई होती है, नींबू डाला हुआ होता है और गुण इसके अंदर और भी बहुत सारे होते हैं, तो इसको हम बालों को धोने में भी प्रयोग कर सकते हैं। और रही बात दाल और सब्जी बनाने की, जिस जो भी हम सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चावल अगर हम बना रहे हैं, तो ये पानी हम उनको पकाने में काम में ले सकते हैं। क्योंकि पानी अगर होता है, कई बार हम बाल भी नहीं धोना है, पीना भी नहीं है, तो जो भी खाना बन रहा है उसमें अगर पानी का प्रयोग करना है तो हम वो उसका कर सकते हैं। या फिर पौधे पौधे जो होते हैं उनमें भी डाल सकते हैं, लेकिन खास बात यही ध्यान में रखनी है कि पानी हम पूरे 24 घंटे के अंदर अंदर हमें काम में लेना है। ये नहीं कि हमने फ्रिज में रख दिया, 2 दिन बाद हम उसको काम में ले रहे हैं। अगर 2 दिन हो जाते हैं तो उसको हम पौधों में डालें, वरना उसके अंदर स्मेल आ सकती है या फिर वो नुकसान भी कर सकता है। पानी अगर पीना है तो जैसे ही दूध फटता है उसको हम तुरंत पीने के काम में ले सकते हैं, और उसके बाद सब्जी में और किसी भी चीज़ बनाने में ले सकते हैं। खाने के काम में हमें 2-4 घंटे के अंदर ही ले लेना है। फिर भी जैसे मैंने कहा, बाल धोने में या त्वचा के लिए, तो हम और हर शरीर की अपनी फितरत होती है बहनों, हर शरीर में अलग अलग सहन शक्ति होती है। कोई किसी को कुछ सहन होता है, किसी को नहीं होता है। बात अगर खाने की ही करें तो किसी को नींबू किसी के डाइट में सही रहता है, किसी की डाइट में नहीं रहता। नींबू बहुत गुणों से भरपूर है, लेकिन फिर भी हम नींबू का प्रयोग कई लोग जो है वो नहीं करते हैं। वैसे ही ये जो मैंने प्रयोग बताया है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये सूट करता है, या फिर जिन्होंने काम में ले चुके हैं, या फिर किसी को एलर्जी है तो वो इसका प्रयोग ना करें, या फिर डॉक्टर की सलाह से ही कि अगर दूध के प्रोडक्ट आपको मना है तो आप इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसको हम पौधों में काम में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको खाने में ले, बाल धो सकते हैं या फिर इसको पौधों में डाल सकते हैं।

चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन

0: बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बहनों, अब बात करते हैं कुछ खाने पीने की, कि गर्मी भी है, बारिश का मौसम है, कभी धूप तेज निकलती है, तो खाने पीने का मन जो है वो थोड़ा थोड़ा करता रहता है। कभी करता है कि कुछ ठंडा ले लें, कभी करता है कुछ तला हुआ, जैसे चाय पकौड़े तो सबके बारिश होते ही मन में आ जाती है। और कई बार जैसे सर्दियों में तो सबके घरों में लड्डू बनते हैं, हर तरह के लड्डू बनते हैं, लेकिन गर्मियों में आते आते हमारा मन नहीं करता है कि हम लड्डू खाएं, लेकिन कभी कभार मन हो भी जाता है कि कुछ मीठा खा लें, घर का खाएं, तो हम चावल के लड्डू जो है उनका प्रयोग कर सकते हैं। चावल जो है वो हम गर्मी में अगर खाते हैं तो बहुत हैवी नहीं रहता है और गुणों से भरपूर होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। खासकर यदि हल्के भुने हुए चावल का आटा जो होता है वो अपेक्षाकृत पचने में सुपाच्य हो जाता है, और हम जब भी लड्डू बनाते हैं तो उसको सेकते तो है ही। ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए बहुत ही कोई भी इसको खा सकता है। जो गेहूं नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। पौष्टिकता इससे बढ़ाई जा सकती है। इसमें हम सूखे मेवे हैं, तिल है, मेवे नहीं भी डालें, तिल नहीं डालें तो हम साधारण सिंपल लड्डू भी बना सकते हैं। मावा जो है वो हम डाल सकते हैं, नारियल जो है वो कसकर डाल सकते हैं। लंबे समय तक ये सुरक्षित रहते हैं क्योंकि इसमें घी जो है वो कम मात्रा में डलता है, क्योंकि चावल जो है वो घी कम सोखता है, इसलिए कम ही इसमें घी डलता है। इसीलिए हम इनको गर्मियों में या इस मौसम में भी खा सकते हैं। तो चलो आज हम इनको बनाने की विधि जो है वो भी अपनी बहनों को बता दें। तो बहनों, जल्दी से कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए सामग्री। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, 2 कप के हिसाब से मैं बता रही हूँ सारी सामग्री। तो 2 कप चावल का आटा लें, 1 कप गुड़, उसको हम या तो कूट लें या थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं, वैसा 1 कप गुड़ रहना चाहिए, 1/2 कप पानी, 2 बड़े चम्मच घी, या आवश्यकता पड़ने पर हम थोड़ा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, 2-3 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे, उसमें हम ऑप्शनल है बिल्कुल, उसमें हम डालें या न डालें, काजू बादाम कुछ भी हम उसमें डाल सकते हैं, अगर घर में नहीं है उस समय तो हम नहीं भी डालें तो चलेगा, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर जरूर डालें, इससे खुशबू जो है वो अच्छी हो जाती है। अब बनाते हैं विधि, कैसे बनाना है ये सुन लीजिए। चावल के आटे को धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक हल्का भून लें। इसका कलर जो है, क्योंकि सफेद होता है इसलिए ब्राउन नहीं करना है, हल्का भूरा होने तक हमें इसे सेकना है। एक बर्तन में पानी और गुड़ डालकर गरम कर लें, जब तक गुड़ पूरी तरह घुल न जाए। जब पूरी तरह गुड़ घुल जाए तो गुड़ की चाशनी जो है वो बन जाती है। कुछ ऊपर जैसे गुड़ में अशुद्धि होती है, कुछ गंदगी होती है, तो हम उसको चलनी से हटा दें। चाशनी में घी, इलायची और मेवे जो हैं वो मिलाएं। धीरे धीरे चावल का आटा डालकर अच्छी तरह इसको हिलाते जाएं और मिलाते जाएं। इसमें अगर हम जल्दी जल्दी मिलाएंगे तो गुठली नहीं पड़ेंगे और आटा जो है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। मिश्रण जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद हम उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि वो हाथों में गर्म ना लगे, और हाथों में कुछ चिकनाई लगाकर हम या तो लड्डू बना लें या फिर हम इसको एक प्लेट में जमा कर इसकी चक्की जैसी भी बना सकते हैं। लड्डू को ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा होने के बाद किसी भी मर्तबान में, जार में डालकर रख सकते हैं। अगर हमें इसका स्वाद और भी बढ़ाना है तो हम इसके अंदर नारियल जो है उसको कसकर डाल सकते हैं, सूखा नारियल। इसके

तिल भी डाल सकते हैं, और जिनको गुड़ सूट नहीं करता है वो शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ जो है वो पौष्टिक होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके हम गुड़ ही अगर डालें तो अच्छा रहेगा। इसलिए बहनों ये सारी सामग्री अगर आपको, फिर से मैं बता देती हूँ कि हमें 2 कप चावल का आटा लेना है, 1 कप गुड़, आधा कप पानी, 2 बड़े चम्मच घी, 2-3 चम्मच कटे हुए बादाम या काजू, आधा चम्मच इलायची पाउडर, ये सब चीजें अगर आप लेंगी तो लड्डू जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे।

0: In Jharkhand, 8 people were killed in separate lightning incidents during the last 24 hours across the state. Several people sustained injuries. 3 deaths were reported from Hazaribagh district, while 1 person each died in Ramgarh, Palamu, Lohardaga, Godda and West Singhbhum districts. In FIFA World Cup, Mexico defeated South Korea 1-0 at the Guadalajara Stadium, Mexico, to become the first country to qualify for the knockout round of 32 today. Following a tactical scoreless first half where clear chances were sparse, the decisive breakthrough arrived in the 50th minute. India's LNG tanker Disha has successfully arrived at the Hague port in Gujarat after crossing the strategically important Strait of Hormuz. It is carrying 62,370 metric tons of liquefied natural gas from Qatar's Ras Laffan terminal. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. IMD has also predicted thunderstorms accompanied by hailstorms at places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heatwave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbh till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful 5-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds center's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति

0: में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

0: कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9 1 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए

0: किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे अनोखी अदा फिल्म का गीत। ये फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के चुरू केंद्र से सुन रहे हैं FM 100.7 MHz पर। प्रोग्राम है तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में अनपढ़ फिल्म का गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आज का अर्जुन फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं।

इस गीत के साथ ही प्रोग्राम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी प्रथम सभा अब यहीं संपन्न होती है। द्वितीय सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में आप सुनेंगे समस्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशकान। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चूरू से किया गया। शाम के 5:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण। कार्यक्रम के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in a short while. He'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगी श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
2: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you, the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through that is the forgetting the number. and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो आती है.
2: People will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let this Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
1: जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है. जी.
2: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili.
1: Pehli baar.
2: Yeah. This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000.
1: Mm-hmm.
2: Right?
1: Mm-hmm.
2: And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000.

0: 1000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल, सभी को फायदा है.
0: Yes.
1: बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं.
0: Yeah.
1: और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी. और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
0: Yes. See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs.
1: Hmm.
0: It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा. बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं. नहीं,
0: That's true.
1: आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ
0: yeah.
1: बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: Yeah, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years.
1: Hmm.
0: But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years.
1: Hmm.
0: Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 saal.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आपको देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job. Because

0: Because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जेनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे. और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
0: Has been to generate more than 3.5 crore jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना. जी,
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and

0: People are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think. Almost 700 people are seated over here. Right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: Yes, it's full. Not a single seat is empty. People are, they're all job seekers. And most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to their phone that they've got their letter.
1: An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हु आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button. the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that whatever he does,

0: It's something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of a country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and he's on the way, he's on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the at the on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed and they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient. They are independently, the financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in, and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है. नहीं,
0: दैट्स ट्रू. एंड यू नो आई अटेंडेड वन ऑफ दीज डेज, यू नो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and he will see that it, you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So that's why, you know, here, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा। तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में। और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही, इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना। तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं, और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर क्या जा रहे हैं यहाँ से।
0: Yes, and one more thing, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, And even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable for, not only young, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, he goes among the children, goes and mingles with them, and what a beautiful atmosphere, So all these things, he has got all these qualities, to mingle with people and take your, he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है, फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी, है ना।
0: And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India, right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then, over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister's Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, they have always, the Labour and Employment, they've always carried out these Rozgar Melas, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही
0: बिल्कुल
1: होती
0: बिल्कुल
1: हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया। नहीं तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
0: in fact, the person right in front of us, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person,
1: ट्रांसलेट किया
0: yeah,
1: है।
0: he's translating through action. It's really interesting to see him, the way he's doing the music, everything, and say, and when the words, when the words come, he's translating it through his actions, and it's really very interesting, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it'll be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा। जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी। बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं। और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। नहीं
0: आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज, ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेज, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन, ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। दैट That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.

0: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
1: एक बार

0: अपने स्थान ग्रहण करें।
1: मैं मन्नत भाटिया
0: और मैं जयवर्धन गोयल,
1: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का
2: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the desk.
1: प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
2: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
0: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
0: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
1: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: And now the welcome remarks
0: जोरदार तालियां हो जाएं।
2: बश्री मनसुख मांडविया, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाई एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टैब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को

वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का एक नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2,400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।

0: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कुछ एक पलों में, है ना?
1: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
2: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
3: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
4: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
3: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
5: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
6: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
1: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.

0: स्वागत किया संदेश बेहतरीन शनकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
1: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
1: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
0: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
1: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
0: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं,

लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है।

और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33

लाख करोड़ 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत

के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है। लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा। हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ

विदेश कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्प के नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है।
और मैं तो खेल जगत के लोग

0: मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
5: हम आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं, कुछ पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
6: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नए रोजगार सृजित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, साथ ही व्यवस्था में भी कई बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को अनुमति मिलती है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से पिछले एक दशक में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना युवाओं और उद्योगों के बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है।
0: ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
6: प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। वहीं देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम हुए। प्रदेश में ये कार्यक्रम जयपुर सहित जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। जयपुर के सीतापुरा में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसमें अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का उपयुक्त साधन बनाया जाए। आज नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का जिक्र किया। श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में बहुत मदद की है। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन ये तभी सफल हो सकती है जब व्यापक डेटा लगातार उत्पन्न किया जाए।
7: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती।
6: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के तहत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। ये उपलब्धि युवा जीवन की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि अभियान में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत और देशभर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज विधानसभा परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम योगोत्सव का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में हुए इस योगाभ्यास में विधायक, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रदान करता है, साथ ही शारीरिक समन्वय, मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
8: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं। और इस योग से एक नई ऊर्जा का भी संचारण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनंदिन जीवन का अंग बनाएं ताकि हम लोग निरोगी रह सकें, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सकें।
6: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज अपने आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। राज्य में अन्य स्थानों पर हो रहे योग कार्यक्रमों के तहत आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद संस्थान की ओर से हवा महल तक योगा रैली निकाली गई। इसमें संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। उधर पाली में आयुर्वेद विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास करवाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आज से अगले महीने की 5 तारीख तक के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। इस अवधि में राज्य सरकार के विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध पर फिलहाल यथावत रहेगा। इसके साथ ही वर्षाकाल में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर भी स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों और पति पत्नी के मामलों में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज्य उन्नति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही अन्य कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करते हुए लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में वरिष्ठ अधिकारियों ने युवा उद्यमियों से संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से भी संवाद किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और यहां के युवा एक से बढ़कर एक नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं।
9: राजस्थान में करीब 8,000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज हैं जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स तक हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
6: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज SI भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसमें 20,798 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक जयपुर द्वारा समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वे वर्तमान नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। गौरतलब है कि 1,086 पदों के लिए ये लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की गई थी। जयपुर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर निगरानी और कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर शहर के 15 स्थानों पर लगे 47 कैमरों के माध्यम से वाहन चालकों पर ऑनलाइन निगरानी रखी जा रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात योगेश गोयल ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने और लाल बत्ती का उल्लंघन करने जैसे मामलों में नियमित ई चालान जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रोबेशन पीरियड वाले राज्य कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से भी राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में हर महीने 800 रूपये की कटौती की जाएगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। विभाग के संयुक्त निदेशक प्रहलाद कुमार मीणा ने बताया कि इस निर्णय से कर्मचारियों को सेवा के प्रारंभिक चरण से ही सामाजिक सुरक्षा और और वित्तीय संरक्षण उपलब्ध हो सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ने कहा, युवाओं और उद्योग के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर

0: हुआ नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ इंद्रजीत यादव ने कुशलगढ़ पंचायत समिति की बड़वास छोटी निशानावट और टिमेड़ा बड़ा ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में बांसवाड़ा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली चंद्रपोल गेट से शुरू हुई। जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा और आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ राजेश दत्त पांडे ने रैली को रवाना किया। इसमें स्काउट और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिकित्सा विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश कुमार भाबूर ने तलवाड़ा ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने चित्रा डूंगरी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और एएनएम आशा सहयोगिनियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और सभी पात्र लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना केंद्र बांसवाड़ा में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉ इंद्रजीत यादव, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत और समाजसेवी पूंजीलाल गायरी ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। जिला कलेक्टर ने छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का दौरा कर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर हैंडपंपों, टैंकरों और जल स्रोतों की स्थिति की जानकारी ली। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम होने से समस्या सामने आई है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। खराब हैंडपंपों की मरम्मत भी कराई गई है। जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नारी चौपाल लगाई गई। कार्यक्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी महिलाओं को सहायता राशि के चेक बांटे गए। बांसवाड़ा में युवा संबल मेले का आयोजन भी किया गया। इसमें जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से आए 812 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 431 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, जबकि 174 युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृषि विभाग ने आत्मा प्रशिक्षण हॉल में प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित की। किसानों को प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की जानकारी दी गई। इसके अलावा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी प्राकृतिक खेती विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रगतिशील किसानों, स्वयंसेवी संस्थाओं और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग लिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जिले में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने लोगों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले की 9 पंचायत समितियों में चित्रकला, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इनमें लगभग 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जनजातीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में 6 जून से 26 जून तक आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों के 262 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें 120 बालिकाएं और 142 बालक शामिल हैं। खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी, खो खो और फुटबॉल, हैंडबॉल तथा बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो नौजवान और उद्योगन एक सागे आगे बढ़बाऊ नौकरी धंधारा मौका बनबारी गति बधैला। पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त काल जारी करी जावेला। 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए रकम भेजी जावेला। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों रा तबादला माथे रोक हटाई। थर्ड ग्रेड अध्यापकों रा और चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला। और आरपीएससी एसआई भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि हमारा राज माए नौकरी धंधारा नुआ मौका बनावन सारू कई योजनावां चलाईची है और व्यवस्था माए जरूरी बदलाव करीचिया है। प्रधानमंत्री पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत आज करीब 2,400 करोड़ रुपया री रकम जारी कीनी। ई मौके श्री मोदी कहो कि नौजवाना और उद्योगों रे एक सागे आगे बढ़वाऊ नौकरी धंधारा मौका बधे है। वह केंद्र सरकार का न्यू लाडला 10 साल माए चलाई जी न्यारी न्यारी योजनावा रो जिक्र करता था का कहो के ए योजनावा मोटी तादाद माए नौकरी धंधारा मौका बनाया। प्रधानमंत्री कहो के आ योजना नौजवाना और उद्योगा बीच मजबूत पुल रो काम कर रही है।
1: ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
0: प्रधानमंत्री नौजवाना सागे बातचीत कीनी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा समेत आखा देश माए 200 ठोड़ा क्षेत्रीय कार्यक्रम ही राखी चिया। जयपुर माए फिर राज्य स्तर रा कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त काल जारी करी जावेला। इन जरिए 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी जावेला। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आई ई कार्यक्रम सारू तैयारियां चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रुपया री 3 किश्ता माए कुल 6,000 रुपया री माली मदद दी जावे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानूनी प्रक्रिया रा हर दौर माए प्रौद्योगिकी ने असरदार तरीकों काम लेवन री जरूरत माथे जोर दीनो है। वे आज नई दिल्ली माए 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 माए बोल रहा है। गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली रो जिक्र करता था का कहो कि आपराधिक न्याय प्रणाली ने देश रा हर रहवासी ने संविधान माए दिया जे हक हासिल करन रो उपयुक्त जरियो बनावन रो भगत आग्यो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली कई मुश्किल मामला नई आसान बनावन माए घनी मदद कीनी है। गृह मंत्री कहो कि फिलहाल इरा बूता रो केवल 10% ही काम लियो जा रियो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली अपराधियां रे पिछाण करण माए घनी असरदार है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती।
0: 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए आज विधानसभा परिसर माए योग कार्यक्रम राखी चियो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई माए करी जाए ई योगाभ्यास माए विधायक, विधानसभा सचिवालय रा अहलकार और कर्मचारी शामिल फिया। ई मौके देवनानी कहो कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन रो नजरियो बतावे है। वह सगलाऊ योग ने रोजमर्रा रो हिस्सो बनावन री अरज कीनी।
3: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं। और इस योग से एक नई ऊर्जा का भी संचारण होता है। इसको हम केवल एक दिन न कर

0: करके इसको अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं ताकि हम लोग निरोगी रह सके, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सके।
1: मुख्यमंत्री बचनलाल शर्माई आज वाना रहवास में थे विश्व योगासन चैंपियनशिप में तमगा जीतन वाला सागे योगाभ्यास किन्नो। इस आगे राज्य में चल रहा योग कार्यक्रम तहत जयपुर रा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली निकाली ची। इन पाछा संस्थान रा शिक्षकों और विद्यार्थियों री ओरों हवा महल ताई योग रैली निकाली ची। पाली में आयुर्वेद विभाग री ओरों सामूहिक योगाभ्यास करवाई चियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके भारतीय वायुसेना देशभर में योग सत्र राखेला। रक्षा मंत्रालय रे मुजब वायुसेना रा कर्मचारी वाना परिवार वाला सागे योग सत्र में शामिल भेला। वहां सागे स्कूली बच्चा और एनसीसी कैडेटी आखा देश में न्यारा न्यारा वायुसेना टेसना माथे रख्या जावन वाला योग सत्र में शिरकत करेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य सरकार सरकारी अहलकारा और कर्मचारियों का तबादला माथे रोक फिलहाल हटा देनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग री ओर जारी हुक्म रे मुजब 5 जुलाई ताई तबादला कराया जा सकेला। हालांकि शिक्षा विभाग रा थर्ड ग्रेड अध्यापकों का तबादला फिलहाल नहीं कराया जावेला। इस आगे चौमासा में बीमारियों का पसारा री शंका न ध्यान रखता थका चिकित्सा विभाग में ही तबादला माथे रोक रहवेला। हुक्म रे मुजब घना मंदा कर्मचारियों और लोग लुगाई रा मामला माथे खास ध्यान दियो जावेला। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग रा अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह नवाचार और उद्यमिता हलकाओं जुड़िया खास लोगों सागे आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नो हब में बातचीत कीनी। इन दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम रा विकास मौका और चुनौतियां रे बारे में चर्चा करी ची। कार्यक्रम में श्री सिंह सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष मुद्दा माथे चर्चा करता थका कहो के राजस्थान नवाचार और उद्यमिता ने बढ़ावो देवन माए खास काम कीनो है। वह स्टार्टअप इकोसिस्टम रो फायदो मोटा शहरा सागे दूर राजिना और समुदाय ताई पुगावन माथे जोर तीनो। कार्यक्रम पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री सिंह कहो के प्रदेश में 8000 बत्ता स्टार्टअप है और नौजवान नुवी जुगत लगा रहा है। वह कहो के स्टार्टअप रा मामला माए राजस्थान देश रा अगाड़ी राज्य माए शामिल है।
2: राजस्थान में करीब 8000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज है जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
1: राजस्थान लोक सेवा आयोग आज SI भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो। आयोग रा सचिव राम न्यास मेहता बतायो कि 20,798 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू पास करी चिया है। पास हुआ उम्मीदवार ने शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू जानकारी देती जावेला। आ उम्मीदवार री पात्रता संबंधी जाँच इंटरव्यू री भगत करी जावेला। ध्यान जोग है कि 1086 ओहदा माथे भर्ती सारू आ लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 न लीरी जी ही। जयपुर पुलिस यातायात नियम तोड़बा वाला ने खिलाफ निगरानी और कार्रवाई और कड़ी कर दीनी है। शहर में 15 ठोड़ा लगाई जिया 47 कैमरा रे जरिए वाहन चलावन वाला माथे ऑनलाइन तरीका निगरानी रखी जा रही है। यातायात पुलिस रा उपायुक्त योगेश गोयल बतायो कि तेज गति वाहन चलावण और लाल बत्ती पार करण वाला रे खिलाफ लगातार ई चालान जारी करिया जा रहा है। राज्य में प्रोबेशन पीरियड वाला सरकारी कर्मचारियों ने राज्य बीमा योजना रो फायदो दियो जावेला। बीमा और प्रावधायी निधि विभाग कान्यू मिली जानकारी रे मुजब आ कर्मचारियों ने तनख्वाह हुई राज्य बीमा प्रीमियम रा तौरों हर महीना 800 रुपया री कटौती करी जावेला। आ व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 लागू मानी जावेला। रेलवे जोधपुर चेन्नई बीच हर सप्ताह खास रेलगाड़ी चलावन रो फैसलो किन्नो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो कि

0: गाड़ी 27 जून नु 25 जुलाई ताई हर थावर न जोधपुर नु रवाना वेर सोमवार सिंजा चेन्नई पुगेला वापसी माए आ गाड़ी 30 जून नु 28 जुलाई ताई हर मंगलवार न चेन्नई उ रवाना वेर गुरुवार न जोधपुर पुगेला आ गाड़ी जयपुर सवाई माधोपुर भोपाल नागपुर और विजयवाड़ा समेत कई खास स्टेशन माथे रुकेला राज्य में अब अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रा विद्यार्थियों सारू छात्रवृत्ति री योजना वारा तहत अर्जी देती बगत निवास प्रमाण पत्र देवन री जरूरत नहीं रहेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रे मुजब ई फैसला रो मकसद विद्यार्थियों सारू अर्जी देवन री प्रक्रिया ने आसान बनावनो है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रा उम्मीदवार सारू प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वारो हर साल करीब 1,20,00,000 विद्यार्थियों ने फायदो मिला है हाल ताई वजीफा सारू निवास प्रमाण पत्र जमा कराउनो जरूरी हो आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो नौजवान और उद्योग एक सागे आगे बढ़वाऊ नौकरी धंधा रा मौका बनवारी गति बधेला पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसान रा खाता माए रकम भेजी जावेला राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों रा तबादला माथे रोक हटाई थर्ड ग्रेड अध्यापक रा और चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला और RPSC SI भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो नमस्कार
1: यार FM 107 MHz पर हम आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती और गृहस्थी

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनाले सगले हेताड़वाने भाई किसने कानसू?
6: भाई अयुब खान गोड़ कानीसू। मोकला मोकला राम राम राम राम कृष्णा भाई, राम राम
5: राम राम राम राम।
6: कृष्णा भाई, अपनी खेती बाड़ी का जो अनुभव है वे अपने बडेरा से अपन सीखने मिले है। क्या करे भी है ना के दादो सिखावे पोता ने जीवन जीने रो ढंग। दादो सिखावे पोता ने जीवन जीने रो ढंग। भला गनारा टपरिया हिलमिल रेवे संग, हिलमिल रेवे संग।
5: भाई देखो, बातड़ी की शुरुआत ही हिसाब से कर दी के भाई आप श्री को झुको दादे पोते को पहली झुको मेल मिलाप हो। जब चौपाल लागिया करती, बूढ़ा मिनक बैठा करता, बांगंज का टाबरिया वे भी जाके बैठ जाया करता, और बाकी आप श्री का मैंने बात सु देखो कि उनको सीखने बन मिला करतो। वो एक अलग वक्त हो। अब आर ज्या ज्या वक्त बदलो है, जिसका छोटा टाबरी वे बड़े मिनखाकन बैठने में शर्म करें, या बाकी जिसकी बातें है ज्ञान की बातें है बैंक मैंने आनंद को ले। और नया नया देखो विज्ञान के जमाने का जिसका इंस्ट्रूमेंट आ गया गया।
6: बिल्कुल देखो कृष्णा भाई, थे दादर पोते की कार्यक्रम में बात करी हो तो देखो पुराने जमाने में जब आप मौसम की बात करा और आप बिजाई की बात करा तो अपना बडेरा है जिको आसमान में यूं देख के बता देता कभी आज मौसम है जिको खराब होगो, आज

0: मैं देखो तावड़ो पड़ेगो, आज लू चलेगी, आज बिरखा होगी। भी तारा ने रात की जब बात करा तो तारा ने देख के वे समय को अंदाज भी लगा लेता कि भई ओ तारो इतनी बजे अठा सके तो इतना बज सके है। आज देखो धीरे धीरे बखत बदल्यो है, बखत बदलने के सागे सागे जिका अपना मौसम संबंधित है, खेती बाड़ी से संबंधित है, सारो को सारो जिको परिवर्तन आए है वो नई तकनीक के माध्यम से। नई तकनीक आज आप घर बैठा है जिका मौसम को अनुमान है जिको लगा ले बिरखा आण हर बखत में किसी को होगी कोनी होगी, आंधी आवेगी सुंटो आवेगो, ए सारा का सारा देखो अंदाज आज आपा मोबाइल में देख के है लगा लिया, मौसम विभाग से संबंधित जुड़ के है बड़ों लगा लिया। और अपनो जिको कार्यक्रम है यो खेती और गृहस्थी जिको गांव गांव ढाणी ढाणी तक पूछ करे तो बठेगा इताड़ू सुनकी है जिको मौसम संबंधित जिकी जानकारी है बैंक को भी है जिको पतो लगा ले। और लेकिन जब आप बडेरा की सीख की बात करा हाँ वह देखो अपने सदियां तक है वह काम आवे है। आज आप आकाशवाणी में बैठे हाँ बात का अपने तालवा से बात कर रहे हैं तो बा क्या है आप बडेरा गन बैठ की बाकी जी की खेती बाड़ी की तकनीक है बा सीख की आप अपने खेत की जुताई है वह करता। लेकिन आज वक्त बदलो है अपना बडेरा जब खेत जोतता किसना भाई तो उनटाऊ हल बाता है तो देखो लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा अपना खेत होया करता, मिना ही अपना बिजाई में लाग जाया करता। लेकिन आज जोत अपनी छोटी होगी, उत्पादन आप ज्यादा लेना चाहवा, जनसंख्या बढ़ी है तो जनसंख्या बढ़ने के सागे सागे उत्पादन भी आपने बढ़ानो बहुत जरूरी हो गयो। क्योंकि जन को पेट भरा पेट जद ही भरे जावा, कम जमीन का मायने आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेवा तो बी के लिए देखो आज आप नई नई तकनीकी अपना की ज्यादा से ज्यादा पैदावार है बा आप क्या लेवा। तो बैंक मैंने बिजाई से पहला आप है जिको अपने खेत की गहरी जुताई कर लिया, जुताई करने के बाद में जब बिजाई की जब बारी आवे तो बी बखत आप किसना भाई बीज को उपचार है वो करके आप अपनी बिजाई है बा करा, मौसम को आप पूर्व अनुमान है वो सही सही लगा ले, अपन कितनी गहरी है जिकी अपने ने बिजाई है बा करनी है और प्रमाणित बीज को जिको आप चयन करा वो देखो आज आपने अच्छी गुणवत्ता को अनाज है वो आपने मिलने लाग रही है।
1: भाई अबार ज्या वो मौसम चाल रही है तो मौसम ने देखता थका ज्या विज्ञान की आपा बात करा तो आपन मौसम की जानकारी वक्त सारू मिलती रहे। पहली बात तो आई है कि मौसम की जब आपन जानकारी मिल जाए तो भी मौसम की आपा सावधानी कर सका। पहली देखो कि अंदाजो लगाता, अंदाजो कई बार देखो सही भी हो जाते और अंदाजो कई बार गलत भी हो जाते, लेकिन अबार विज्ञान देखो बहुत आगे चली गई। आज अगर आपन मौसम की जानकारी मिल गई कि भाई घंटा बाद में ईशो मौसम रहने वालों है तो आप मान लो कि 90% लगभग सही होने का चांस हो गया। पहली तो देखो अंदाजो मारता, लेकिन आज देखो विज्ञान के जमाने में एक की चीज की जानकारी मिलने लग रही है इको अपन फायदो भी उठानो चाहिए। जे बात आप खरीफ की फसल की करा तो भाई कई जगह राजस्थान का जगह जिला मांग मायने बिरख्या होगी और घनकरी की जमीन आप इलाका की जो बात करा तो बाई भी गई है पर बहुत सारा खेत देखो खाली भी है क्योंकि मानसून की बिरख्या अभी तक आई को नहीं है। पूर्व मानसून की जी बिरख्या बार बार आने लग रही है, पूर्व मानसून की बिरख्या कई ठोर बहुत जोर की हुई है। तो देखो खेती बाड़ी की जुताई है बा मिनखा सही कर दी क्योंकि देखो सावचेत मिनखी आप जद भी रेडिये पर आवा तो भाई पहली तैयारी की आप बात करते करता रहा तो किसान देखो के आजकल इन चीजा की बहुत फायदा उठा रहे हैं भाई जानकारी लेता रहे और एकदम पहली सुबह तैयार रहे जे बिरख्या हो जाए और बार अंदाजो लाग जाए कि भाई अबार अपन खेती जोतनी चाहिए तो भाई जोत दिन भी को फायदो बान देखो मिलन।
0: बिल्कुल देखो किसना भाई जब आप बिजाई की आप बात करा तो देखो अपने मानसून आने पर तुरंत अपने खेत के मायने पूरी अगर नमी हो तो आपने बिजाई है बा करनी है। अगर आप जल्दबाजी कर ली और सूखी जमीन में आप है जिको बीज है वो गेर दियो तो वो बीज है वो खराब हो सके। बी के बाद का मायना बीज की जिकी गहराई है वो अपन विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो ज्यादा डूंगो भी कौन गेरनो है और ऊपर भी कौन गेरनो। डूंगो गेरा का तो अंकुरित होने के मायने बहुत टाइम लगेगा, अगर ऊपर आपा गेर दिया तो देखो वो ऊपर से ही है जिको कोई चिड़कली चुग जाएगी कोई देखो खेतांग में तो खूब सारा जिका मित्र पक्षी हो वह भी चुग ले तो अपन बीज की गहराई है बा एकदम सही और पूरी होनी चाहिए की वजह से आप है जी का।
1: देखो गहराई की जो बात करी तो आजकल अड़ा की खेती तो ऊंटा की खेती तो

0: देखो बहुत कम होगी और तकनीकी जमाना एक मायने देखो कह खेती है बा ट्रैक्टर की थ्रेसर की बा खेती हो लगी तो कल्टी की जगी खेती है बैंक मायने लगभग भाई आपा बीज को अनुपात वो सही रहे लेकिन फिर भी बिक लिए आपन खेज को है वो देखो है समतल होना बहुत जरूरी है। अगर ऊंची नीचे जमीन हुए तो बिक मायने देखो बीज बराबर पड़े कौन जितो पढ़ना चाहे भी तो पड़े कौन खटे ज्यादा पड़ जैसी खटे कम पड़ जैसी। तो पहली बात तो खेत की तैयारी की देखो आइए कि भाई बीज खाद ए तो आपा पहली व्यवस्था कर ली लेकिन जद बोझो डाली कर हाँ बी बगर खटे जे आपन कोई टेकड़ी दिखे तो बैठे देखो ट्रैक्टर चढ़ने में उतरने में दिक्कत आवे या बीज है बराबर पड़ने में दिक्कत आ तो बी टेकड़ी ने आपने कस्सी से बराबर कर देनी चाहिए ताकि बीज जो वो बराबर पड़े। कई की बहुत ढलान वाली जगह में अब बैठे ट्रैक्टर चाले देखो कोई हादसे भी होने की गुंजाइश रहे बांधने भी थोड़ा ठीक से आपा कर दिया तो एक तो बीज बराबर पड़ सी और आपनी कोई जगह जमीन है बा खाली कौन रहे नहीं तो आपा मान लो कि बिजाई कर दी भी के बाद में भी ऊंट पाडाऊ आपन अलग से बाजो थोड़ी बहुत बीघा दो बीघा आधी बीघा जमीन बच जाए तो बीघी देखो बुआई करनी पड़े
1: बिल्कुल।
0: तो इस चीज की भी देखो ध्यान रखनी बहुत जरूरी है।
1: देखो कृष्णा भाई अपने खेत में टेकड़ी की बात करी हो तो देखो अपना किसान भाई है वह टेकड़ी को भी खेती बाड़ी में बिजाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखे कि अगर ऊंट के ट्रैक्टर नहीं चढ़ रहे तो वह कह रहे हैं कि भी टेकड़ी के ऊपर अपने जिकी बेलदार सब्जियां है बांको भी देखो बिजाई है भाई रूम में से कस्सी से बीज लगा दे वे तो देखो टेकड़े के ऊपर है जिका काकड़िया मतीरा की बीज तोरू की बेल लगा दे वे तो वो उत्पादन है वो चाहे बाजार में बेचो चाहे घर में खाओ तो बैंक को भी अपने किसान भाई है सदुपयोग करे तो टेकड़ी ने भी किसान भाई आपने देखो बिजाई से वंचित है बा नहीं रखनी है चाहे आपने थोड़ी सी अलग से मेहनत करनी पड़े तो आपने जरूर है बा करनी है। और खरीफ की जब बिजाई देखो बखत के ऊपर हो जाए कृष्णा भाई तो बखत के ऊपर बिजाई करेड़ी है वह हमेशा किसान के हित में रही है क्यों के समय समय के ऊपर देखो इंद्रदेव मेहरबान हो जावे तो उत्पादन के मायने कोई कमी है बापा ने कोनी लागे
0: भाई दे इंद्रदेव की थे बात करी तो बिरख्या भी आपने काल भी हुई पांच सात दिन पहली भी हुई बिरख्या आपका लगातार हो रही है मानसून देखो उस तक आयो को नहीं तो बहुत सारी देखो आपने खेत की जमीन जगह पक्की माटी की भी हो खास तौर से पिंक मायने दिक्कत आवे के थोड़ा सो एक सागे ज्यादा बिरख्या हो जाए तो पानी भराव की स्थिति हो जाए तो जका किसान बहन देखो के ये की माटी के मायने या के खेत की जमीन के मायने जे खेती बाड़ी करनी है तो बाद में थोड़ा देखो इंतजार करना पड़े या तो जटे पानी भराव की स्थिति है भी स्थिति ने आप पहले से ठीक करा कि भाई आपने खेत के मायने पानी रुके नहीं और जे मान लो कि आपने पानी रुक गयो तो बिक मायने आप थोड़ी तसली करा दो चार दिन निकाल के जद मान लो कि बिरख्या को पानी सूख जा बिक बाद के मायने बिजाई करा तो ज्यादा ठीक है
1: बिल्कुल। और देखो अगर आपा ने बिजाई आपा कर ली है अब आपा के थोड़ा सो बखत है तो कृष्णा भाई आपने कोई सीव सीवाड़ा है वह भी सही कर लियो कोई अपने खेत का मायने कोई जिको नुकसान जिकावारा पशुओं द्वारा जो नुकसान हो बस आपा है जी का बस का कोई तार बंदी को तार टूटेड़ो है कोई पट्टी पड़ गई तो बिना आपा सीधी कर लिया आपा तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान बहन एक बार फिर कहना चाहवा कृष्णा भाई बार बार भी कहता रहा कि जिका सीव के मायने जिका झाड़ बोझा है बनाना आपने सीवा ने देखो सुरक्षित रखनी है सीवा ने सुरक्षित रखने से अपने बहुत फायदो है कृष्णा भाई पहलो फायदो तो है कि भाई उन आड़े के मायने जिकी आंधी चाले भी आंधी से देखो अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति है ऊपर ऊपर की उड़ की दूसरे खेत में चली जावे एक तो बे को बचाव हो जावे दूसरो बचाव अपना जी का मित्र पक्षी है वह मित्र पक्षी भी शिवा का मायने आपको घोसलो बना ले आपको परिवार बढ़ा ले तो अपनी फसल ने नुकसान पहुंचाना रहा जी का कीट पतंग है वह देखो आपकी चोंच चुकी आपको तो पेट भर ले अपनी जी की फसल है वह सुरक्षित रहे। अब जरूरत आओगी कभी अपन मित्र पक्षियों को संरक्षण किया करना है बी के लिए आपने देखो उन्याले के मायने थोड़ा सो आप लिए कोई दाणो चुगो आपा है बड़े रख देवा पानी है वो है जिको बड़े रख देवा तो के उन्याले के मायने जिका अपना मित्र पक्षी है वह अपने खेत ने छोड़ के दूसरी जगह कौन जावे क्योंकि बड़े बनाने चुगो मिल गयो और बड़े बनाने पानी मिल गयो और बठे बांग रहने का जिका घोसला है वह भी है देखो सुरक्षित रहे तो मित्र पक्षियों को संरक्षण कृष्णा भाई आपने जरूर है वो करना है। और एक फुट की दो फुट की भी अगर आप सीम राख रखी

0: है तो निश्चित रूप से कृष्णा भाई अपने ताड़वांग खेतांग मायने मित्र पक्षी आपका घोसला बना होगा, आपको परिवार बड़ा होगा, और जब परिवार बड़ा होगा तो अपनी फसल ने नुकसान पहुंचा रहा कीट पतंग है बांक को वह नाश करेगा।
1: और देखो जे आप खरीफ की फसल की बात करें तो अब यार देखोगे बीच बीच के मैंने आपका कई छिड़का हो गया तो जे मान लो गए बिरख्या हो जाए अभी दो चार दिन बाद मौजूद बिरख्या हो जाए तो बिजाई में जे अपन थोड़ो वक्त लाग जाए आज आप मान लो जे मानसून की बिरख्या को इंतजार करने लाग रहे हैं तो खेत के मायने देखो कि घास से बो हो जाए वो खरपतवार को रूप लेने लाग जाए तो अपने बिजाई से पहले बीर ने देखो काटू भी बहुत जरूरी है क्योंकि जे पाड़ आप पहली कर दी और बी के बाद में जे एक दो बीर क्या होगी तो लाजमी एक बड़ी घास तो बटूक सी और बी के मायने जे आप बिजाई कर सा तो वो घास से अपनी फसल ने नुकसान पहुंचा
0: बिल्कुल।
1: तो बी ने या तो मान लो आप कैसे ऐसे जिद भी आपन वक्त मिले थोड़ो थोड़ो बी ने काटा और क्योंकि भाई कई बहुत सारा जगह मैंने कहा मानसून की बिरखा इंतजार करने लाग रहा बिजाई करी को नहीं कह भाई मानसून की बिरख्या ऐसी बिजाई कर सा और बा खेतांग मायने बिरख्या दो तीन होगी तो घास कूट लो देखो मोकलो कूड़े
0: बिल्कुल
1: बीन भी काटनू बहुत
0: बिल्कुल। देखो और बिजाई के बाद के मायने जब खरपतवार अपने खेत के मायने जब बड़े लाग जाए ना तो अपन खरपतनाशी को प्रयोग है वो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि खरपतनाशी से एक बार तो आप अपने खरपतनाशी पर नियंत्रण कर लेंगे लेकिन आना वक्त के मायने अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति है वह कमजोर होगी। अपन कैसे ऐसे निदान करने से खूब सारा फायदा होगा एक तो अपने खेत की जमीन है बा उरली हो जावे और जब पोली जमीन रहे तो नमी है कृष्णा भाई कई दिन तक जिकी बरकरार रहे तो अपनी खड़ी फसल है बा तीस को नहीं आवे तो जब भी अपन निनान करा तो अपन खरपतनाशी को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है कैसे ऐसे निनान करना और कैसे ऐसे निनान करने से अपने खेत की खड़ी फसल ने नमी कई दिन तक मिलती रहेगी तो अपनी फसल है बा बढ़िया बढ़वार करेगी।
1: तो भाई बात यह है कि आपने खेती बाड़ी की जिकी भी सावधानी वह देखो पहले से ध्यान रखनी है तैयारी अपन पूरी रखनी है बीज है खाद है जिकी भी चीज आप चाहे वह पहले से आप तैयार रखा जे बिरख्या आपने बिजाई के लायक हो जा तो आप फटाफट बिजाई करा। और अब भाई के आपन देखो कोई शांति सी लोक रचना भी किसान भाई सुनानी चाहिए क्यों भाई इंतजार करने लाग रहे
0: बिल्कुल सुनाओ सा
1: तो सुनो या शांति सी लोक रचना।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: किसान भाई, आ संदेश पाछा आपरो कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है। ए संदेश में पहला आप बेजिका मीठी सी लोक रचना सुनेर। कृष्ण भाई, आप अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा, फेर करा अपने किसान भाइयों के हित की बात। सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजना चल रही है और सारी कल्याणकारी योजना देखो आप बखत सारू बताता भी रहा और अपना किसान भाई लगभग योजना को फायदो भी है जी का लेवे लाग रहा। तो आज भी अपना योजना है जी का किसान भाइयों के हित की है और ए योजना को भी फायदो है जी का अपना किसान भाई है भाई जरूर उठा रहे है। नहीं उठा रहे है तो आप कार्यक्रम सुन की है, ई योजना को ऊपर आप विचार करके ई योजना को फायदो है भाई उठा सी
6: भाई। जे योजना की बात करी तो मेरे ख्याल से थारो जुगो मकसद है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से संबंधित है। योजना देखो कोई भी हो, खास तौर से किसान भाई के हित की योजना ज्यादा चल रही है क्योंकि आपनो देश कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी के ऊपर आपने जिकी जनसंख्या आबादी को आश्रित है। तो ये योजना की बात करा तो एक मायने 100 सबसे कम प्रदर्शन करने वाला जिका कृषि जिला है बाने शामिल करा है भाई। जबकि जिला की उत्पादन क्षमता कम है, बान पानी पात की सिंचाई की व्यवस्था बांग मायने कम है, वह 100 जिला आपने पूरे भारत के मायने चुने है और 500 जिला के मायने सरकार की यह योजना है कि भाई आप इसको चमत्कार करके दिखावा के बाक मायने सौ ज्यादा
5: उत्पादन है वो मिले।
6: अब सौ ज्यादा उत्पादन मिले ई खातिर देखो प्रयास तो करना पड़े, यह तो मिले को नहीं भाई। बे जका जिला पिछड़ रही वह जिला ने सरकार आपकी ओर से पूरा को पूरा जको भी प्रोत्साहन है, जकी भी सुविधा है वह देसी और बी के बाद के मायने बेज का जिला है वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो सी आ सरकार की योजना है। और इकुज को मुख्य उद्देश्य है वो कृषि के क्षेत्र के मायने बा जिला ने अव्वल करनो और ई योजना के मायने 6 साल की देखो अवधि राखी गई है। बी 6 साल की अवधि के मायने सरकार आपको एक निश्चित बजट भी निर्धारित करे है, 24,000 करोड़ को जो बजट है वो आ 100 जिला के लिए आवंटित करे कि भाई आ 100 जिला ने आपा कृषि के क्षेत्र में कई आने
5: आगे बढ़ावा
6: आगे बढ़ावा तो 24,000 करोड़ की जिसकी राशि है बांक ऊपर खर्च करी जाओगी। अब 24 करोड़ की राशि जिसकी खर्च करी जाओगी बीक मायने देखो कई बार समस्या आ भी आवे के जिसकी राशि खर्च करनी चाहिए बीक मायने बीच का मायने भी कई बार समस्या आ जा जिसका बिचौलिया वह भी नुकसान कर दी तो बी के लिए भी सरकार जो सीधी जो बजट है वो किसाना ने सीधो दियो जा रहे बीक मायने बिचौलिया की जरूरत को नहीं और एक निश्चित लक्ष्य राख्यो है के सोज का जिला ही बांक के मायने 11 मंत्रालय शामिल करे हैं और 36 केंद्रीय जिकी योजना ही बने एक सागे शामिल करिए कि भाई जिया आपा जकी भी योजना बी के लिए अलग अलग अपन बटनों को पड़े भी योजना की जानकारी लेने खातर आप फलानी जगह जावा भी मंत्रालय के मायने संपर्क करा इं जरूरत को नहीं। जिकी 36 योजना ही बने एक सागे ई योजना के मायने जोड़
5: लिया
6: और 11 मंत्रालय बन भी देखो शामिल कर लिया। अब आप 36 योजना को एक सागे जे नाम आप बोल सका तो बिन आ प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के नाम से बोल सका सगली योजना एक मायने शामिल और जका लाभार्थी एक मायने सरकार आपके आंकड़े के हिसाब से बता रही है

0: बया बता रही है कि 1.70 करोड़ जगह किसान ही बाने ई योजना को सीधो लाभ मिले। तो देखो एक मायने जिसका किसान भाई ये भी घनक राग शामिल हो रहे हैं और खास तौर से एक मायने जिसको सिंचाई की जिसकी सुविधा है फसलों की जी नई नई किस्म ही धान की ही दलहनी ही और सागे सागे जबको भंडारण की व्यवस्था है बिकी भी पूरी की पूरी व्यवस्था ई योजना का मैंने ली गई है। क्या कई बड़े अयु भाई किसान भाई उत्पादन मोकलो कर ली लेकिन उत्पादन करने के बाद क्या मैंने फसल मोकली होगी तो भी फसल ने बचाने की समस्या बहुत देखो मोटी है। क्योंकि जे आपने मान लो 50-60-100 बोरी हो जाए तो फिर आप देखा भाई आना पर राख से गया साल 6 महीना जी राख नहीं पड़ जाएंगे तो कीड़ो लाग जाए वो एक मान लो गए 1000 प्रकार का रोग लाग जा तो आप भी होता है फटाफट बिन बेचने की कोशिश करा और जब आपने उत्पादन हुए बी टाइम देखो कि अपन भावी जका मिलना चाहिए मिले को नहीं सस्ते के मायने अपन बेचना पड़े तो सरकार की जगह भंडारण की व्यवस्था है भाभी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का मैंने शामिल करी है।
1: बिल्कुल
0: क्या भाई थाने जे कोई चीज की जरूरत है सरकार की ओर से कोई चीज की मदद की जरूरत है तो मैं थान प्रोवाइड करवा सा लेकिन थे थारो जो नाज है बढ़िया किस्म का अनाज ने छांट के अगर थे सुरक्षित रखना चाहो अगर भी को भाव लेना चाहो 6 महीना साल भर बाद में जे बेचना चाहो तो वह व्यवस्था भी थे करो भी के लिए सरकार जी के थाने कोई भी प्रकार की जे मदद हो सी तो वह करने के लिए तैयार है। तो जे आप आ मान की चालांगे भाई सरकार जी के किसाना ने हर क्षेत्र का मैंने आपकी ओर से मदद करने को संकल्प ले लिया तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है एक मायने देखो बहुत सारी बातें शामिल कर गई है हर एक जानकारी अगर थे लेने चाहो बा जानकारी भी थाने मिल सी 20 टका को अगर थाने मान लो इं लागे कि भाई आपा कोई बिचौलियो है कोई अफसर है कि अपना पिसा खा नहीं जावे तो बा खाने की भी एक मायने कोई गुंजाइश को नहीं सीधी जिकी संपर्क है वो आपके खाते के मायने पिसा सी बिन जगह भी उपयोग में थे करनो है वक्त सारू तो भी के मायने उपयोग कर सको।
1: बिल्कुल देखो कृष्णा भाई अपने भारत वर्ष के मायने बहुत सी जगह यहाँ की है कभी बड़े खेती बाड़ी के नाम से भी है जिको एक अनाज पैदा को नहीं हुए तो भी खेतीबाड़ी में जिकड़े आपने जिको भी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कई अलगा जिला भी है अपने जिया थे कार्यक्रम में बात करी गई हिंदुस्तान का 100 जिला है जड़ा कृषि की कोई एबीसीडी कोई ब्यूरो को नहीं तो वे कृषिका ने भी देखो ई योजना में शामिल करके और अनुपजाऊ जमीन ने उपजाऊ बनाने के लिए समय समय के ऊपर है जिको बनाने जिको सहायता है वह देती आ रही है। अपने देखो पारंपरिक जिकी खेती हो या करती बी से अटकी अपा है जिको अपनी खेती बाड़ी के मायन उत्पादन है जिको लेवे ला गया ज्ञान के रूप में लेवे ला गया तो सरकार है वह बहुत सारी योजना है किसाना के लिए लेके आए कई न कई देखो किसाना की आय है बड़े भी के लिए उन्नत किस्म को बीज है बढ़िया उर्वरा शक्ति बढ़ाने आ रहा जिका पोषक तत्व है और समय पे बिजाई है उपचारित बीज है तो कृष्णा भाई किसाना ने ज्ञान वर्धक जी की बात बता की और अन उपजाऊ जिला ने उपजाऊ बढ़ाने के लिए सरकार अपने किसाना के सागे खड़ी है और जब सरकार जब किसाना के सागे खड़ी हो तो निश्चित रूप से अपना किसान भाई है सरकारी योजना को फायदो उठा के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन है वे लेवे और आप भी संपन्न होवे अपनो मुल्क भी है वो भी संपन्न होवे किसाना की आय है वह बढ़े।
0: और अयुब भाई देखो एक बात और है काले जहां 20 तारीख है और 20 तारीख ने अपना जगह प्रधानमंत्री जी वे किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कर सी तो थोड़ी चर्चा देखो अपन अभी करनी है कि लंबे वक्त से किसानान देखो कि योजना को फायदो मिलने लाग रहे।
1: बिल्कुल
0: भाई 2000 रुपया एक किस्त का सरकार मौके मौके पर अपन देने लाग रही है और बी की अगली जगह किस्त अब काल जारी हो सी पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री जी जारी कर सी तो आप देखो कि जितो फायदो अपन सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि से मिले है तो बोझ को फायदा वो देखो कापन वक्त के ऊपर मिलने लाग गए। अब जहां मान लो के बुआई को वक्त है तो बुआई के वक्त आपने मान लो के एक किस्त आपने मिल सी तो जगह किसान भाई देखो आय को कोई स्रोत नहीं है वे आ चाहो भाई खेती बाड़ी तो मैं भी करा लेकिन 5 रुपया टाइम पर मिले को नहीं तो खेत है वो बाढ़ में देरी हो जाएगी या
1: वो बिजई को नहीं
0: बिजई कौन जावे और आजकल की खेती देखो यहाँ की एक 5-4 दिन अगर निकल गया तो 5-4 दिन निकलने का

0: बाद के मायने कई खेत इसा में बांग मायने थे बीज बनाई दो, लेकिन जिसका पड़ोसी आपने पहली खेत बीज दिया बाम थारू ना आजादू ही गुण बैठे और वो अभाव के कारण सो है भाई। कई भी ट्रैक्टर से आपा संपर्क रहा काम वो 5 रुपया पहली देसी बिगन पहली देसी आपा जो उधारी कर चा तो मैंने कैसे रुक जाए एक बार फुर्सत को नहीं। तो ए जगह 2000 रुपए देखोगे एकदम बहुत बढ़िया वक्त को प्राप्त
1: बिल्कुल देखो। और बखत भी यहाँ को है कि खरीफ की बिजाई को बखत है।
0: हाँ।
1: जी को नेड़ा आ गया अब बस अपना उड़ीक कर रहे हैं कि अभी मानसून की बिर का कद बरसे। हाँ। और कद आपा है जी को हल लेकर अपने खेत में। और देखो हल लेने से पहला प्रधानमंत्री जी अपना जी का 2000 रुपया अपने खाते के मायने बेचता ही है जी। आप जाके बैंक को निकलवायो आपने जरूरत के अनुसार बीज खरीदो और बीज खरीद के बिरखा बरसता ही आप अपने खेत के मायने चले जावा और बखत के ऊपर बिजाई है बापा कर लेवा। दूसरो फायदो हो गयो किसना भाई ए किस से आपा है जी का सेठ साहूकार जाकर कर्जे के रूप में है जी को बिजाई को बीज लियाता या रुपया लियाता बेहू अपनी है जी की गेल छुटकी जिको साहूकारा से देखो किसान ने अपनी सरकार है वह बखत स्वरूप बचायो है और बखत स्वरूप साहूकारा से बचा के आज अपनो किसान है वो आत्मनिर्भरता की तरफ है जिको बड़े लाग रहे
0: भाई। जे छोटे किसाना की आप बात करा या गरीब किसाना की बात करा तो बा के लिए तो आप मान लो के खेती बाड़ी के मायने पूरो पूरो परिवर्तन आये जका यहाँ सोचता ही कोनी का भाई आप बिरख्या कि मानसून की पहली बिरख्या होता है आपने खेत के मायने बिजाई करा तो बांध तो देखो इंतजार करना पड़तो अवार मांगे पॉकेट के मायने जब मान लो जे पिसा ही तो भाई भी फटाफट आगले कह के भाई तड़के दिन ये मेरी बिजाई कर दो हाथों तेरा पिसा ले। अब जगह बिजाई करना बांध तो भाई पिसा ही चाहे पिसा देसी जगह ने तो देखो पहले पिसा फिंकुड़ तमाशा देखो वो आजकल वो जमानो है। तो भाई आप किसान ने भी ई पिसा को देखो मोकड़ो फायदो
1: बिल्कुल और अपने किसान भाई ई योजना को फायदो भी है उठावा लाग रहा है। किसान भाई बातचीत तो आप और भी अपने दाड़वान से करेंगा अब एक बार फिर ले चला गीत संगीत की ओर। देखो गीत संगीत भी है रंग रंगीलो। अच्छा। मारो राजस्थान सुनो मीठी सी लोक रचना।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की

20वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान

0: कृष्णा भाई आप अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और बढ़ा अपनी खेती बाड़ी की तरफ, और खेती बाड़ी भी देखो शुरुआत से लेकर आखिर तक है जी का आपने बडेरा से बहुत कुछ सीखता आया, लेकिन अब थोड़ा सो के है कि कृष्णा भाई वक्त बदलो है और वक्त बदलने के साथ खेती बाड़ी का स्वरूप भी बदले। आपने टाबरा को जिको व्यवहारिक ज्ञान है, जिको खेती बाड़ी से जुड़ेड़ो, अपने तो से जुड़ेड़ो, अपने दादा दादी से जुड़ेड़ो, आपके नाना नानी से जुड़ेड़ो, वे में थोड़ो सो अपने यूं लगे है कि कमी होवे लाग रही है, और कमी भी इं लगी महसूस होवे लगी कृष्णा भाई के कठा अपना परिवार संयुक्त परिवार सर एकल परिवार की तरफ आपा है जी का जावे लाग रहा, और एकल परिवार एक बार तो यह लागेगा आपा खूब है जी को आनंद जीवे लाग रहा, लेकिन गेड़ ने बावड़ की आपा देखा तो वो आनंद है जी को आपा ने नहीं मिल रहे है जी को संयुक्त परिवार के रूप में आपा लेवे लाग रहा। अब संयुक्त परिवार के मायने तो अपना बडेरा का सागा आपा ने अलग अलग तरह को अनुभव मिलियो, कटे किताबी ज्ञान मिलियो, कटे खेलने को ज्ञान मिलियो, कटे खेती बाड़ी को ज्ञान मिलियो, कटे पशुपालन को ज्ञान मिलियो, और कटे मुर्गी पालन को ज्ञान मिलियो, और कटे भेड़ पालन को ज्ञान मिलियो, और कटे बकरी पालन को ज्ञान मिलियो। अब ज्ञान ने आपा आगे किया बढ़ावा बी के लिए अपने आपा ने खेती बाड़ी है जी को जुड़नो पड़ सी
1: भाई जी का टाबरिया है किताबा तो देखो पढ़ी है और क्यों तो देखो कि किताबा के मायने भी सरकार की सोच बदली है और इसका बहुत सारा पाठ भी देखो जुड़े हैं जगह खेतीबाड़ी से संबंधित थी। अब पहली बात तो देखो आ है कि आप जे घर के मायने भी बात करा तो आपने टाबरा आप आ बात करा कि भाई जकी चीज आप खान लाग रहा आप कोई भी प्रकार को व्यंजन खान लाग रहा वो सारो वो सारो आपने खेतीबाड़ी से मिलने लागे,
0: खेतीबाड़ी से थाली तक पहुंच रही,
1: थाली तक पहुंच रही, और खेतीबाड़ी का मायने जका किसानी को उत्पादन करने लाग रहा है वे मिनक देखो के तरीके से को उत्पादन करने लाग रहे हैं तो आपने थोड़ी बहुत भी की सीख होनी चाहिए भाई। आप टाबरा ने देखो के चौकी पढ़ाई करने लाग रहे हैं, सगला जगह मिनक आ चाहो भाई आपनो टाबर है जिसको पढ़ लिख की चौकी नौकरी लागे, लेकिन भाई देखो के नौकरी तो सीमित ही और आबादी आपने देश की देखो के भाई ज्यादा है। अब आबादी के हिसाब से आपने देखो सगला ही काम धाम करना पड़ेगा, केवल आप एक ही क्षेत्र के मायने अगर आगे भागने लाग जाओ तो देखो बटे भीड़ माचेगी। खेती बाड़ी का तो देखो इतना क्षेत्र ही के बांक मायने अपनी आधी से ज्यादा आबादी है बात देखो एडजस्ट हो रही है, तो बाहर जे टावरा ने आप घर के मायने मान लो विज्ञान के रूप में मान लो जिसकी नई नई जानकारियां बे अबार आपने सामने आन लाग रही बे जी आप घर बैठा साझा करा तो भाई आज जी आप थोड़ी बात करी फिर आप कल बात करी बार बार भी बात ने देखो बच्चा के सामने आप जे रखा तो बाके भी थोड़ी समझ आग भाई एक की चर्चा करने लाग रही।
0: बिल्कुल देखो कृषि को ज्ञान है
1: हाँ
0: बीस आप टावरान देने से एक तो अपने पर्यावरण के प्रति जिका पा उदासीन हो गया जागरूकता आवेगी कि पर्यावरण आप साफ सुथरो किया रखा
1: जी
0: वो भी टावरान ने देखो अपन बस सीख मिले बी के बाद में अपना जिको खाने को जिको महत्व है
1: हाँ।
0: जिन आप भोजन बोला हाँ वे को अपन के किया अपने थाली खेत उन थाली तक पहुंचे तो कितनी कड़ी मेहनत करने के बाद में बिजाई करा निनाण करा फिर आप अपनी फसला ने कीड़ा से बचाने के लिए कोई दवाई को प्रयोग करा फिर भी की कटाई करा फिर भी की आप कटाई करा फिर वो अपने घर तक आवे तो कितना स्टेप आप खेती बाड़ी मावा तो बे टाबरा ने पतो लागे कि भाई अपना बडेरा है इतनी मेहनत करके खेत थाली तक है जिको धान है वो ल्यावे लाग रहा है अभी अपने टाबरा ने अब से ही आप शुरुआत कर देवा तो वो लगाव है कृष्णा भाई एक तो अपने बडेरा से लगाओ आपके दादा दादिया से लगाओ माँ बाप से लगाओ और अपनी खेती बाड़ी से लगाओ और खेती बाड़ी के सागे सागे अपने पर्यावरण से लगाव है वो टाबर को हो जावे तो बेक मन का मायने आ रहा है कि नहीं आप पढ़ेंगा भी पढ़की है जिका नई तकनीक से खेती बाड़ी करेंगा नई तकनीक से खेती बाड़ी करेंगा तो उत्पादन भी है वो आप बढ़िया लेवेंगा। अब हर एक आदमी की यह सोच होगी कि आप नौकरी करा अगर सारा ही नौकरी करा लाग जाएगा तो खेत में उत्पादन है वो कौन लेवेगो तो जन है वो पेट कौन भरेगो तो अपन शिक्षा के सागे सागे खेती बाड़ी को ज्ञान भी लेना बहुत जरूरी
1: है। देखो के उत्पादन की जानकारी आप देखा तो एक फायदा अपन ओ भी हो सी के जिया

0: अपने खाने को जो दुरुपयोग होने लगा, जहाँ बड़ी बड़ी शादियां मान लो, घर के मायने भी आप मान लो गए, जहाँ टाबर ने जो बेरो नहीं हुए तो एक रोटी थाली के मायने छोड़ दी, सब्जी भी के मायने छोड़ दी, कोनी भावे भानो कर दियो, और बाद में ये चीज की जानकारी हो सी कि भाई ना देखो कितो मुश्किल से पैदा होने लग रही, किसान कितो कड़ी धूप के मायने तब पैज जाएगी नाज आप मिल रहे, सब्जी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आ चीजा की जानकारी हो सी तो बी के मन में आ भी आसी कि भाई आप आज पकी पकाई जगी रोटी खान लाग रहे हैं, भाई रोटियां को अगर दुरुपयोग होने लाग रही को मतलब आप एक जो आप किसान है बिल्कुल आपा सम्मान गुण कर रहा,
1: बिल्कुल
0: को भी एक सागे अपमान हो रहे, और आर्थिक रूप से तो देखो आपा नुकसान हो रही हो रहे, भाई जगो एक मिनट को खानो अगर मान लो कि आप खराब जान लाग रहे तो सीधो आपा नुकसान होने लाग रहे, 30 दिन की जो आप गिनती करा तो कितो नुकसान हो, ब्याह शादी के मायने जावा आपा अनाप शनाप बैठा आपा खानो देखा तो ये को मतलब ओ तो कोनी की भाई आपा सगड़ो जुगो सामान है थाली के मायने गालियो, आपा आधो ही गुण भाई आधो है जो बेकार चले गयो, तो वो भी एक खाद्यान्न को देखो नुकसान है, तो बच्चा ने जब आपा जठे अपन नाज को उत्पादन हो रहे बी के लिए के प्रयास करो जा रहे हैं बी की जानकारी मिल सी, बी का अपना मन के मायने एक भाव आसी कि भाई वो खानो जुगोई को उपयोग जटते हुए जब तक तो ठीक है, लेकिन दुरुपयोग करना तो आपा नुकसान को
1: कहा, दुरुपयोग कृष्णा भाई हमेशा ही किसान के देखो अहित में रहे, किसान के ही नहीं आम आदमी के, अगर आप बात करा तो क्या जुंठन अगर आप छोटा लाग रहा तो कठिन कठे कहीं पेट को ऊपर है जिको आप गांठ है बा मारे लाग रहा, तो अन्न को दुरुपयोग अपन बिल्कुल भी नहीं करना है, और जब अन्न को आप दुरुपयोग कर सिया तो उपलो भी है जिको अपन कठिन कठे है वो आ कैसी कह न जीणों को सलीखो को नी, मन में एक विचार आवे के भाई अठे जीणों को सलीखो को नी, तो जीने का भी तरीको हुए कृष्णा भाई के भाई आप खाणो जितो अपन जरूरत हो आप बीतो लियो बीते आप अपनो पेट भर लियो, और थाली ना आप एकदम यू साफ सुथरी करके छोड़ दी, कभी एक मायने एक अन्न दाने को अन्न भी आप जिको बर्बाद है वो कौन करियो, तो बर्बादी रोकनो भी अपने टाबरा ने शुरुआत में अगर आप सीख देना शुरू कर दिया तो वो भविष्य के मायने आप तो भी को बचाव करे ही करे, वो चार टाबरा ने आपका बराबरिया ने भी सीख देवेगो कभी अन्न है आपने बर्बाद है वो नहीं करना है, तो खेती बाड़ी को सागे सागे अपने अपने टाबरा की जिकी बढ़िया शिक्षा के सागे सागे खेती बाड़ी की शिक्षा देनो अपने लिए बहुत जरूरी है। कृष्णा भाई बातचीत तो और भी कर अपने तालवा साहब एक बार फेल है चला गीत संगीत की और सुनावा एक मीठी सी लोक रचना
0: सुनाओ साहब।

0: किसान भाई सीमा मिश्रा गाइड गीत के सगी आज को कार्यक्रम खेती और गृहस्थी बस अठे तक अयुब खान गोड
1: और किसने बहन देव सीख करा
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत विपिन सचदेव और लता मंगेशकर की आवाज सनम बेवफा फिल्म से। गीतकार सावन कुमार, संगीतकार महेश किशोर।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से

0: अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी चूरू से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आवाजें हैं मोहम्मद अजीज साधना सरगम की खुद गर्ज फिल्म के लिए। गीतकार इंदिवर और फारूक कैसर, संगीतकार राजेश रोशन।

आकाशवाणी चूरू से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता केशर देव तंवर के साथ। आपको बता दें रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोक गीतों और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गौरबंद। यह आवाज़ उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की यारा दिलदारा फिल्म से, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जतिन ललित का संगीत।

0: कब्जा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं फिल्मिक सुदर्शन लव 7 MHz पर। कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम

0: रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री

0: सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
1: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और

0: प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
1: This is the country.
2: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं, और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है, जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone.

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: तुलसी नर का के बड़ा, समय बड़ा बलवान। तुलसी नर का के बड़ा, समय बड़ा बलवान, और बिला लुटी गोपियार बई अर्जन बई बाण।
6: कार्यक्रम बाता ही चाल सुनारा सारा है तालवा ने भाई मोहन का निशू
5: और पंकज भाई का न्यू मोकड़ा मोकड़ा राम राम। मोहन भाई देखो, के बात है के समय जको है ना, वो मानस ने बड़ा बड़ा नाच नचा दे।
6: बिल्कुल नचा दे।
5: समय की महिमा इसी है के वो फरसु अर्श पर ला दे और अरसू अर्श पर ला दे। जब भी आके बचा लिए के तुलसी नर का के बड़ा, समय बड़ा बलवान, और भिला लुटी गोपियार बई अर्जन बई बाण, दुरंदर जका ने बांका धनुष बाण बटे रह गया, कौन कर सका क्यों।
6: सही है।
5: समय जको है बिको पियो जको है मोहन भाई, वो चाल तो रहे, भाग तो रहे, गतिशील रहे, रुके कोनी, अनवरत जारी रहे, और बखत जद रुके कोनी चाले गो तो फिर भी बखत ने जे जीवन जोड़ के आपा देखा तो फिर आपा रोक के या आपा डांट के कर सका। आपने तो हाथ में ही कोनी। समय जको है बिकी महिमा आप भी है के जको समय बीत गयो वो समय ओजू को नहीं आना बतावे ने के जे जबानू निकलेड़ी बाण शरीरू निकलेड़ा प्राण है बकदी उठा को नहीं आना, वो ही बखत है। बखत बीत गयो जको ओटो को नहीं आवे। ठीक है ने, तो समय रुके को नहीं, जको बीत गयो वो ओटो को नहीं आवे। कितनी बड़ी घटना घट जाओ जीवन साला को सागे।
6: बिल्कुल चलो,
5: तो फिर इस जीवन में बहुत आराम हो और बहुत बढ़िया तरीके हो जीवा, ताकि समय जको है बिको मान रह सके। बखत बाजो जा है, इको मतलब बेशक कीमती है, कीमती है। जब बखत को मान तो अपन रखना पड़ेगा, और जको आदमी बखत को मान रखे, जके के समय की मर्यादा लागू है, बिक्यो समाज रेस्पेक्ट करे, बिना वक्त जको है ने वो भी मान दियो आवे।
6: बिल्कुल,
5: अपा वक्त की इज्जत कर सियां तो वक्त अपन मान दियो आसी। तो अब बात आएगी कि हर आदमी की जीवन शैली अलग अलग होवे।
6: बिल्कुल,
5: उम्र का पड़ाव अलग अलग है। बचपन को अगर समय है तो विद्यार्थी है, जवानी को टेम है तो आदमी कमाई दमाई कमाई ने उपार्जन कमाई ने भी लाग रही है, बुढ़ापे को टेम है तो भी मायने लगभग काया का कष्ट रहे। तो कहने को मतलब कि हर आदमी की दिनचर्या जकी है न्यारी न्यारी, लेकिन समय तो सबके लिए एक ही है।
6: सही है।
5: दिन के इतने बजे उगे को और इतने बजे छिपे को।
6: बिल्कुल, देखो वही समय थाने मिले, वही मन मिले, और वही अपना जका हजारा लाखा सुनन आरा श्रोता है बन मिले
5: के दन
6: पर, दुनिया के ऊपर। दुनिया में जितना भी लोग रह रहे 7-8 अरब, और भी का अलावा जो भी पशु है, जीव है, जंतु, सब न
5: आई मगु के दन पशु के वनस्पति,
6: और सब भी समय नहीं अलग अलग उपयोग में लेवे, कोई भी समय नहीं तो बढ़िया प्रकार से उपयोग में लेकर वो देखो कितनी तो ख्याति पाओ और कितना लोगों को भलो कर जाओ
5: कर जा, कर
6: और कई भी समय नहीं गलत काम का मैंने
5: हर
6: जगह काम में लेवे, और कई तो कुछ भी काम में ही ले। सुत्या रह जा।
5: वो समय जे मान काटे तो मैं समय न काटा।
6: हाँ तो उत्ते आपने पर करेगा आप इस समय ने क्यों उपयोग कमाई लिया। और जको पल बीत गयो वो पल तो कदे आणु ही गुन। जको अभी आप बोलिया जको क्षण
5: जगी
6: गई गई आपने जीवन से
5: गई।
6: आप चाहे कितना ही करोड़पति हो आप चाहे कोई भी हो पापा भी पल ने भी
5: अरे तो चितारी की है जका धरती ने तोलनिया ही कौन लिया बखत जको है वो की का हाथ में कौन आपका डाल चालक हो। जीवन जीने के लिए सामाजिक नियम बनेना समाज का जीवन जीने की मर्यादा है। बिक मारे कि अपन जीवन जीनो पड़े क्योंकि अपन समाज में रहनी आदमिया सामाजिक प्राणिया तो जकी समाज की मर्यादा और जीवन जीने का जका नियम बने रही बा नियमा के तहत या बा नियमा के ताबे अगर आपस वक्त की जकी गरिमा है समय को जको मोल है बिना समझते हुए अगर जीवन जीवा और एक तय योजना बनावा गोल जकन बोला लक्ष्य जकन बोला एक तय योजना के तहत कार्यक्रम के तहत

0: और आप अपने जीवन ने जीवा भी मैं खास तौर पर जकी समय की मर्यादा है या समय की जकी कीमत है बिना समझने की जरूरत है बखत सारू ईशा निर्णय लिया जा जकाऊ जीवन जको है वो सोरो है समय जको है वो आने वाले टाइम अपन मान दियो आज अगर आप समय ने मान दे समय आने वाले टाइम अपन मान दियो
1: सही है। देखो आप भी समय नहीं काटा समय भी यही काटा फिर
0: हाँ।
1: और भी वो मूल्य समझा
0: हाँ।
1: और सदुपयोग में लिया तो निश्चित ही आना और जो अपनो समय
0: हाँ।
1: वो बढ़िया ही आवे
0: बिल्कुल। तो अब अपन करनो के चाहिए चाहे आप तय करें कि भाई एक योजना बनावा भी योजना के तब है और समय से जुड़ेड़ा जक्का भी अपनी कार्यशैली अपनी दिनचर्या है बिना ध्यान में रखते हुए और समय सारू आप एक लक्ष्य लेके चला एक गोल तय करा और छोटा छोटा छोटा छोटा जका प्रयास है ना वे प्रयास करके और एक बड़ी सफलता का निबड़ा तो इस चरण में अपन के करना चाहिए। तो सेम पहली जकी बात है वाह मोहन भाई आ करा के काम जको है ना वो बखत पर करा बखत पर अगर कोई काम करियो जागो तो ब्यू जीवन जको है ना वो सोरो बन जैसी
1: बिल्कुल
0: भाई। अब बार की जब आप बात करा तो आप सगला कठिन कठे देखो भले नौकरी करा या कोई कारोबार चाल रही है या कोई व्यापार करा भी के बावजूद भी कठिन कठे आप खेती जुड़ेड़ा जका अपना हेताड़ू है अपना जका श्रोता है आप खुद करीब करीब आप सगला धरती पुत्र या अपनी हैसियत सारू जिसी अपने उपलब्ध आप खेती करा ए समय चारू मेरा थे देखो बिरखा को टाइम चल रही है और करीब करीब लोग ई टाइम बाई तम लाग रहे हैं पहली हड़ाऊ बाया करता जद बहता लोग आगन। अब कृषि का जगह साधन है खेती का जगह साधन है वह बढ़िया धीरे धीरे धीरे धीरे कृषि संयंत्र जगह ही बाकी तकनीक इतनी आगे बढ़ गई एक गांव के मायने कोई टाइम में या मान लो जे 50 बहत भी आ तो भी 15 जा तो बाइंता बाइंता खेता का शिवाना चारू बाया कौन जाता कई जगह तो सूखे के मायने भी दाना घेरना पड़ता और अब जो जो क्रांति हुई खेती का जगह अड़े होने वहां मायने सुधार हो नया नया संयंत्र आया तो ब्यू क्यों को बखत जको है बचत होनी शुरू होगी। आज पूरे शिवाने का जगह खेत है गांव का एक दिन में बाइंता हो जाए एक दिन एक रात में इतना साधन लोग भरा रखे
1: भाई जब को काम पहली 15 में 20 में नमो तो
0: हाँ।
1: वो काम एक दो दिन का महीना हो जाए आधा दिन में हो जाए 5 घंटा का महीना हो जाए इतनी तेजी के साथ हो उसके कि इतनी नई नई तकनीक आ गई।
0: अब होवे जद जद खेत जको है वो तैयार है धनी जको है भी को काम वो बनेगा वो खेत ने तैयार रखे
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना और खेत जे तैयार है तो भी कमा जाके ट्रैक्टर चलेगा खेत जे तैयार को नहीं तो ट्रैक्टर चलेगा कटे
1: सही है।
0: तो बखत पर काम करनो मतलब खेत जद तैयार करनो है जद अपन खेत तैयार करके छोड़ दिया तो अब जद बिजाने की बारी आ रही है जद आप खेत ने बीजा बीजने की जब तक बात करिए तो बिग माई ने भी एकदम टेम पर जगो भाई जागो ने भी नाज की रंगत मोहन भाई ना करेगी
1: बिल्कुल
0: कह बतका ना पा के बांको दे लो रड़े धूल में जाको खेत पछेता में बांको दे लो रड़े धूल में जाको खेत पछेता में और बीज बखत पर बाया निपजे हीरा बालू रेता में
1: बिल्कुल
0: भाई रेत जकी आपने बालू बिम भी हीरा निपजे
1: सही
0: आप टेम पर बावा तो भैया कोई भी काम जको है वो बखत पर करा मानस की एक आदत है बिन कोई भी काम आसी या बात आसी तड़के करांगा काल करांगा अभी कौन करा सोमारू शुरू कर सिया एक तारीख को शुरू कर
1: सिया तड़के पर छोड़ ने वो काम सदा ही अटके डोई रहे
0: आप कौन देखा है दिन के जे आप बात करी के दिन के जल्दी उठ के घूमनो शुरू कर सिया कि 2 कौन करा एक तारीख को शुरू करांगा
1: सही है
0: या मंगलवार को शुरू करांगा तो वक्त पर काम नहीं करके बिन टालनो तिसलानो है ना वो काम पेश कौन चढ़े
1: बिल्कुल।

0: एक तो जो पहलो गोल है या पहलो लक्ष्य है वो आपनो ओ है कि काम जको है वो बखत पर कर सी, और बखत पर काम करता ठीक कटे देख लियो जको मानस कोई भी काम समय सारू करे बखत सारू करे बिको जीवन सोरो है
1: बिल्कुल,
0: वो डिके को करनो खुद नहीं है। कई बार आप भी हो भाई
1: पहली करो या बाद में करनो खुद नहीं है,
0: कई बार आप
1: भी काम ना कर टाइम से कर लिया तो आपनो जीवन जो को सुविधाजनक सुलभ हो जाए और बढ़िया हो जाए।
0: कई बार
1: और भी नहीं आप टाल बोगरा कई टाइम लास्ट में इसी स्थिति में आ जावा
0: भागम भागम करना
1: पड़े। भाग आज ही करना पड़ेगा और भी टाइम आप भी काम ने ढंग से कर भी गुन पाओ और उसके भी टाइम वो भी गुन बिस्तर रह जाओ और टाइम से पहली कर लेवा तो भी के बाद में आप एकदम से टेंशन
0: निश्चित
1: यानी माथा से जुगो वो जब एकदम खत्म
0: और बखत पर काम करे डोरे सिने भी के आदमी की साख भी ना करेगी घर परिवार में समाज में फलाणों का बो भाया टेमो चालनी आदमी
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना व्यू आगे बढ़ा फिर ओ के छोटा छोटा जगह प्रयास से बहुत बड़ी कामयाबी मिल सी।
1: बिल्कुल
0: कीड़ी है ना कीड़ी मन कौन ठास के लेकिन कण ठास के
1: सही है।
0: और भी कण में बार रात दिन लागेड़ी रहे कीड़ी नगर के मां कठ जाके थे देख लियो कीड़ी को बिल खोद के देख सो ने नीचे कुंटला नाज भी लादस के
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना इतो संचय कर ली मैं कठे कोई बड़ो काम हो रही है और मन यहाँ लगे कि मन ने भी मदद करनी चाहिए मन में वो भाव आ जाए मैं तो छोटो सू अदनो सो आदमी मैं की मदद करूंगा
1: सही है तो आपने क्या फर्क पड़े पहली से इतना जना लाग रहे
0: हाँ तो वे आपके हिस्से को करें आप अपने हिस्से को करा
1: सही है।
0: छोटा छोटा जगह प्रयास है अगर मिलके कर जा सामूहिक वे बन जा तो वे बड़ी कामयाबी ला सके
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए कदई आ नहीं सोचने की जरूरत कि भाई मेरो जो अदनो सो सहयोग है या छोटो सो ओ है वो के काम आओगो नहीं क्योंकि भी बीती वैल्यू है जीती बटोड़े की
1: बिल्कुल
0: आगे बढ़ा बात करा के उपयोग तो सही समय पर सही निर्णय लेना मतलब वक्त जको है ना बिको सही उपयोग ने वो जीवन ने दिशा दे मोहन भाई समय के ऊपर निर्णय लेना जरूरी है
1: सबसे बड़ी बात
0: अवसर सब आदमी ने मिले जीवन में भी अवसर ने क्या लेके चले आदमी के ऊपर डिपेंड करे कई जगह आप बात सुना ने कि मौको मिले तो भी पर
1: चौको
0: मार दियो
1: सही आ भी है कर, सही करियो को हर आदमी ने अवसर मिला अब भी भुना कितना जना पाओ बापा पर निर्भर करे अगर बी टाइम में भी सही बुद्धि और सही अकल लगा के और बिन बढ़िया तरीके से बुना ले तो भी देखो
0: कामयाबी की सीढ़ी चढ़
1: जाए सफल हो
0: कामयाबी की सीढ़ी पर
1: चढ़ जाए और जगह बहुत सारा ऐसे देखा जगह योग्य भी है सब कुछ
0: काबिलियत है वहां में योग्यता है
1: पर भी टाइम में भी टाइम सो गया भी
0: निर्णय
1: कौन लियो ध्यान कौन दियो सो गया भी टाइम पे यहाँ सोचो जान दे की फर्क पड़ा और जीवन भर पछताना पड़ा बाद में भी चीज कर तो ये भी नहीं होना चाहिए समय पर आईडी चीज कदे भी नहीं छोड़नी चाहिए कदे भी आलस नहीं करना चाहिए बिल्कुल मन लगा के काम करनो इसी जब भी आपने अपॉर्चुनिटी मिला तो बस जरूर लेनी चाहिए।
0: अच्छा देखो जीवन में कठिनाई आवे आपदा आवे अपना प्रधानमंत्री जी है मैं भी देखो गैरले दिनांक में लोगों को अपील करी
1: बिल्कुल
0: कि आपदा में भी अवसर ढूंढने की जरूरत है। अगर कोई आदमी सामर्थ्यवान है भी मैं सामर्थ्य है भी मैं काबिलियत है अब अभी बात करा ना कि काबिलियत है अगर भी मैं लिबर्टी है तो अगर विपरीत परिस्थिति है आपदा है तो भी बिना अवसर में बदलने की जरूरत है
1: बिल्कुल
0: वो भी वक्त ही सिखावे सही वक्त पर सही निर्णय लेना तो आप बात करी ली कि कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना है लेकिन वक्त माड़ो चाल रे आपदा कमाई ना आपा लेकिन भी मैं भी अवसर ढूंढ लिया कोई आदमी है मान लो नौकरी लाग रही है दिशावरांग मायने या कटाई या गैलने जाए महामारी आई में हल्की आ गई
1: बिल्कुल
0: अगर भी टाइम भी कोई हाथ को हुनर है तो भी आप हाथ का हुनर ना आप कन काम में लियो जा तो भी हूं बिको जो रोजगार है वो चालतो रहसी
1: बिल्कुल
0: बिको जो घर परिवार है भी की पेट रोटी चालती रहसी रुके कौन फिर यूं अगली बात कर आप ब्यूं आगे की बात आ है कि जीवन में कोई भी पड़ाव पर हो किसी भी काम हो कोई भी परिस्थिति हो मोहन भाई सबसे बड़ी चीज है खुद के मां विश्वास बनानो खुद के मां विश्वास कायम रखना सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास आत्म बल मजबूत रखने की जरूरत है। जीवन के मायने परिस्थिति तो ऊंची नीची कलडी नरम चौखी माड़ी चालती रहे, हौसलो अफजाई करने की बजाय मनोबल गिराने वाला ज्यादा होगा, डिमोरलाइज ज्यादा करे। वो काम करना ना हाथ मत गाल ले, बहुत माड़ो पेश चढ़नो दो रहे, ओ के ओ तेरो भाई को नहीं, ओ चाहे भलाई करके सिर पटक लो, पेश
1: तेरे लिए बनियो को नहीं
0: होगा, बनियो को नहीं। खुद के वहां विश्वास जको है वो मजबूत रखने की जरूरत है। गांव के बाद की बात है, आपा कामयाब हो जावांगा जग दिन भाई, लोग जगह आज तांखिन से भाई आके कहेंगे मान तो पूरा विश्वास होगा वो क्यों क्यों करेगा।
1: बिल्कुल,
0: मैं तो पहले ही कहता कि ओ छोरो आगे जागो, लेकिन भी छोरे की स्थिति आएगा, दूसरों के तीसरों के कोई बात को नहीं सुननी सबकी, कहने वाला कहेंगा ही, लेकिन खुद के प्रति विश्वास बना के रख लो, डिमोरलाइज होने की जरूरत को नहीं। अपन देखा करा भाई एक कहानी सुना ने कि एक राजा हो भी को राजपाट छीन गयो और बिन भागने पर मजबूर हो गयो, जो गुफा के मां बढ़ रही हो पर बटे एक कीड़ी जकी बा अन्न को दानो लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करे, चढ़ेर पड़ जा कदे आधी इंटे चढ़ के पड़ जा, कदे थोड़ी सी ऊपर चढ़ के पड़ जा, कदे ऊपर पालियागंज आगे पड़ जा, पांच पर पड़गी, सात पर पड़गी, दस पर पड़गी, राजा जो को भी कीड़ी ने देखे, लेकिन ग्यारहवें बारहवें प्रयास में बा कीड़ी जकी है बा ऊपर चढ़गी, तो बठो राजा है सीख ली। राजा मन में सोचो जो आज कीड़ी छोटी सी है और आपको प्रयास निरंतर जारी रख रही है छोटी को, मुझ तो राजा हूं प्रयास करना चाहिए, वो दोबारा आपकी सेना भेड़ी करी आक्रमण करी और जो दुश्मन राजा भी न रहे और आके आपको राजपाट उठो लियो। तो भैया हर मानस ने खुद के वहां विश्वास रखने की जरूरत है। अगर आप अपने वहां विश्वास कायम रख सा तो कोई भी चुनौती जकी है वह कठिन को नहीं, राज की वह आसान होती जाएगी। तो मन के वहां विश्वास जको है वो आप बनाए डो रखा। इसके बाद में जीवन के मायने एक दूसरी चीज और है जकी को भी बड़ो महत्व है, बहुत जरूरी है, वो है अनुशासन मर्यादा। अभी आप बात करें ना कि सामाजिक जीवन जीने का नियम बने रहे,
1: बिल्कुल,
0: तो वह नियम का मायने हर मानस की मर्यादा तय है, बिना आपकी मर्यादा को ध्यान रखने की जरूरत है, जीवन में अनुशासन पालने की जरूरत है। आप कहना है कि भाई टेम हो गयो, कई बार आप कहना टेम हो गयो, बड्डो हेलो मारे टेम हो गयो, टेम उठने को भी हो, टेम सोने को भी हो, टेम नहाने को भी है, धोने को भी है, खाने को भी है, टेम जे नौकरी करे तो नौकरी जाने को भी है,
1: हर चीज को,
0: कट्ठे भी ऑफिस है, सबका टाइम तय है, 10 बजे खुलेगो, 4 बजे बंद होगो, 9 बजे खुलेगो, 5 बजे बंद होगो, 7 बजे खुलेगो, 12 बजे बंद होगो, टेम बने डो सबको हर जगह, बट्ठे अनुशासन की जरूरत है। कोई भी आदमी सपोज करो मान लो नौकरी करे, 10 बजे को ऑफिस है, तो भी को कायदो है कि वो 9:55 पर 50 मिनट पर पहुंचे।
1: बिल्कुल,
0: एक दिन मान लो कोई काम हो गयो, 10:15 10:30 सहकर्मी है साथी है बन भी यहाँ लगेगी कि भाई आज जेन्युइन कारण है कौन आएगा, लेकिन वो बिना आदत बना ली तो धीरे धीरे दूसरा की आंखें भी गिरने लग जाओगे और भी ऑफिस में भी मैक माइंड ने बिक की जकी रेपुटेशन आप बोला ना मान सम्मान बी के प्रति लोगों के मन में अंतर आ जाओगे यार ये समय के प्रति पाबंद को नहीं हो, सचेत को नहीं हो, समय की मर्यादा को नहीं समझता। तो इसलिए खुद में अनुशासन पढ़ना, वक्त सारू समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर ऑफिस जाना, समय पर जो भी तय काम है वह आप कहा, तो अनुशासन जीवन में जरूरी है, ठीक है ना। और ब्यू अगली जगह बात है वह एक हार नहीं माननी, जकी बार थोड़ी देर पहले आप बात करें ना भी कीड़ी की चिंटी की राजा की, अपन हर प्रयास में कामयाबी कौन मिलेगी कि नहीं कौन मिली आपा कुना, तो कामयाबी नहीं मिली को मतलब नाकामयाब हो गया,
1: सही है।
0: तो नाकामयाब समझने की जरूरत को नहीं, जको प्रयास आपनो विफल गयो है वो अपन सफलता का नहीं एकदम बढ़ाया ही में कोई दो राय को नहीं, तो प्रयास जको है वो निरंतर जारी रखना, हार नहीं माननी, असफलताओं घबराने को नहीं, खास तौर जगह भी टाबर है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, कोई कंपटीशन की तैयारी करें, बाकी लिए भी आ बात बहुत महत्वपूर्ण है, खुद में विश्वास बनाए डो रखे, आत्मबल आपको ऊंचो रखे और कदई हार नहीं माने, जूझने को जो जज्बू है वो कायम रखे। आगे बढ़ा बात करा कि आज की जकी मेहनत है तड़के काम आएगी, टावर पड़े माइन तारी याद आती होगी, माइत कौन कहता है छोरो पढ़ लियो तड़के काम आवेगो, पढ़ लियो तड़के काम आवेगो, तो भैया आज आप मेहनत कर सिया वो आपने काम आवेगी भले।

0: खेती बाड़ी जुड़ेड़ी हो, घर परिवार जुड़ेड़ी हो, पढ़ाई लिखाई जुड़ेड़ी हो, वह अपने काम आएगी, ठीक है ना। और अंतिम जकी बात है वह है कि एक लक्ष्य तय करा, एक गोल तय करा। जै टाबर पढ़ा मन को मन डॉक्टर बनना है, मन मास्टर बनना है, मन पुलिस में जाना है, भाई आप तय करा भी साहब जीवन के मैं जे अपन मान लो खेती करनी है तो अब कड़ापा चना बीज से या अब कड़ापा छावनी की बात करा बाजरो बादशाह बादशाह गाय भैंस जो भी पुराना घर को हिसाब किताब है, टाइम को है या जो भी समय सर हो वो एक नियम बनावा जके हम ऐसा सब चीज शामिल हो। इन तरीकों अगर अपन चाल सियां तो आते है कि समय ने आप मान दे, समय की आप इज्जत कर सियां, आने वाले वक्त में समय आपने इज्जत गांव कन करवासी समाज कन करवासी आते है। बातचीत ये तालों जारी रखांगा, मनोरंजन करावा, सुनावा एक मीठी सी लोक रचना।
1: सुनाओ सर।

0: मांगीलाल कथकर साथियों की आवाज में गायडी आ मीठी सी लोक रचना पा सुनी गणेश आया रिद्ध सिद्ध लाया। और मोहन भाई अब अपने कार्यक्रम में बखत हो गया, बखत बखत री बात कानी बढ़न को, तो बड़ा बखत बखत री बात कानी
1: बड़ो सा।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
5: हाँ, तो देखो अब बात बताऊं था ना एक बार की। एक राज सभा लाग रही, राजा बैठे और पूरी सभा सजड़ी। अचानक थोड़ी देर के बाद में थोड़ा किसान भेड़ा होके आया और आके राजा ने रोता रोता आपकी
6: आप बीती बताई
5: कि पिछले एक महीने से बहुत मुश्किल हालात चालन लाग रहे हमारे गांव का मायना, मदनपुर गांव को नाम हो।
6: अच्छा,
5: कि बहुत बुरी हालात चल रहे, पत्तों को नहीं अचानक से क्यों हो गयो, हमारी जितनी भी फसल है वो सारी खराब होगी।
6: अच्छा, मत ही। अच्छा,
5: जब भी बीज लेके आ रहे, बीज सड़ जा, गल जा, खराब हो जा, जमीन बंजर होगी एकदम से, अचानक ही पत्तों को नहीं क्यों लाग रही। इतन साथ में जब दूसरों किसानों वो बोलियो के बात अठ तक कौन रुकी, आप थटे कौन रुक रही।
6: अच्छा,
5: और ऊपर है कि जो मारा कुआ को पानी है जिससे मैं सिंचाई करा हमारे खेता की, और पेड़ ने जो काम मिल लिया वो भी धीरे धीरे अड़को नीले रंग को पड़तो जा रही।
6: अच्छा,
5: और इतो खारो हो गयो,
6: हाँ,
5: जब भी कोई पीवे ने तो वो बीमार पड़ रही है,
6: बूढ़ो
5: बच्चों

0: परिवार को जो भी पी रही वो बीमार पड़ रही और वो ही पानी में खेता में दिया तो हमारी जमीन भी
1: बंजर होगी उतरे।
0: तो दिक्कत आ रही है कि पानी और जमीन दोनों ही खराब होगी, मुश्किल हालात कमाई चलन लाग रहे हैं। तो कोई ना कोई
1: गेलो काट के
0: समस्या गेलो काटो। राजगुरु बैठे बैठे बात सुन।

0: नदी की वजह से जमीन है जी सारी बंजर होगी।
1: हाँ, बंजर हो गई, पानी खराब हो गया।
0: राजगुरु कहो के बात सुन के मन भी ये लाग रही है कि कोई बड़ो श्राप है जो को थान लागो पर या कोई जादू टोना है विश्व चक्कर हो पण होयो क्यों कारण के तो किसान रोता रोता और बताए का कारण हुआ है कि जब भी मारा बढ़िया फसल हो तो एक फसल को एक चौथाई हिस्सो जो को मैं दान में दिया इवर मारा फसल है जगी थोड़ी कमजोर रही जमानो चौको को नहीं हो तो मैं दान भी कम करियो तो उसके ही कारण से हमारी जमीन है जगी श्रापित होगी। राजा बैठे बैठे बात सुनी पूरी सुन के कहो हाँ थे वो दान कम करियो ई वजह से थारी जमीन है जगी श्रापित होगी। बात तो थारी कहना री जचा है पर थाना आ बात कई गुण थाने या क्या लागे कि मैं दान गुण करियो ई वजह से हमारी जमीन है जगी श्रापित होगी। जबाम से ये किसान रोतो रोतो बोलियो के बात तो माने हमारे गांव के मायने एक जमींदार है सेठ किरोड़ी लाल वो माने आवाज समझाई कि इवर थे दान कम करियो ई वजह से तारी जमीन है जगी श्रापित होगी बंजर होगी वही कारण है। और मानवी की बात भी सही लगी क्योंकि इवर में वास्तव में कम दान करियो। बैठे बैठे अगर राजा का आई दिमाग में बात और की समझ में भी आई कि मामलो की गड़बड़ है
1: बलाओ के किरोड़ी लाल जी ने
0: किरोड़ी लाल जी थारे दिमाग में बात बाढ़ के भेजे और थारे बिया की बिया समझ में भी आएगी बात और वास्तव में जमीन है जगी बंजर हो रही है पानी है जो
1: विषैलो
0: पड़ गयो जहरीलो हो रही है कोई भी पीवे बीमार हो जाए फसल थे भी सब उगा कौन पाओ हालात खराब है। मंत्री बैठे मंत्री ने पूछो महामंत्री का मंत्री जी थाने के लगा मामला जमीन है जगी वास्तव में विशैली होगी जमीन वास्तव के मायने आगे श्रापित होगी। तो मंत्री कहो के देखो मन ये कौन लगे के जमीन कदे किसान ने श्राप दे
1: किसान को और जमीन को तो माँ बेटे तो है
0: पण अब बात जगी मैं सुनन लाग रही हूँ कि जमीन श्रापित होगी अब कल दान कम करियो ए सारी चीजा सुन के मन यहाँ लगे को वो कोई श्राप या जादू टूना को मामलो कम लाग रही है
1: षड्यंत्र है
0: षड्यंत्र मन ज्यादा लाग रही है। तो राजा आदेश दियो कि ठीक है तो फिर की केस की मामले की जांच थे ही करो
1: तहकीकात
0: थे ही करो। तो महामंत्री जी वे चलिया मौका मुआयना करने कभी गांव में जाऊंगा जटी जदी जाएगी बेरो पट्टा को पूरे दल बल के सागा बड़ा पूछा और जटे जी कुए का मायने वो पानी नीलो पड़ियो और बी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे पी के सीधो बढ़ गयो जाके चारों मेर देखा बाड़ी करी तो बट देखियो कि जमीन पर भी थोड़ो यहाँ नीलोपन आ रही यहाँ लाग रही हो थोड़ा बुरादो सो कोई नीली या माटी जैसी चारों मेर बिखर रही
1: है।
0: उठा के वो सुन के देखियो तो यहाँ लाग रही हो वास्तव में कोई जहर जा रहे या कोई रसायन है ऐसी चीज है आ चीज वो सोचो ही होगा जहर है इतने पीछे आवाज आई महामंत्री इनका महामंत्री जी जहर को नहीं हो अब जमीन है जकी इको श्राप लाग गयो बी वजह विशाली हो रही है पीछे मुड़ के देखियो जब एक अट्टो कट्टो आदमी हो पांच सात लठे इतना सागर लेके आयो आके बांग सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई बन राम रूमी गिरी। महामंत्री जी पूछेगा थे कौन भाई साहब जब मैं इस गांव को एक छोटो सो जमींदार हूँ सेठ किरोड़ी लाल नाम सुनते हैं वो समझ गए होगा वो ही आदमी है। जब के बिल्कुल बिल्कुल आओ थे मामलो के मामलो बताओ थोड़ो का मामलो यो है कि गांव की जमीन है जो की श्रापित होगी और पानी है जो कोई जहरीलो हो गयो अब आज जमीन कोई काम की
1: काम नहीं
0: ये गांव आ रहा ऊपर ही तो जोर को कहर टूट के पड़ी है भगवान को आनी तो भयंकर श्राप लगी होगा के करो पर मैं भी गांव को माटी को ही रह गयो और ऐसा मेरा भाई है
1: आंखों दुख मेरो देखियो
0: आंखों दुख मेरो देखियो कौन सा आंखों दुख मेरो दुख तो मैं आगे सागे जी जान से डट के खड़ी हूँ हर हालात का मैंने और मैं तो आना हट तक ये भी कह दियो का अब थारा जमीन कोई काम की को बंजर होगी अब थे कड़ा जाओगा और कड़ा थारा बच्चा जाओगा भूख मरोगा
1: ठीक बात है
0: तो मैं थारी आप बंजर जमीन अब किस्सा में भी लेने तैयार हूँ देवो तो तो वो महामंत्री को तो बहुत बड़ो उपकार कर रहे हो थे पर ये बंजर जमीन को कर्शो के थे क्या कर्शो तो के ऐ तो घाटा रोई सो दो
1: पर ए भाई आगे पीड़ा क्या देखे आगे
0: दुख मेरो दुख ए मेरा भाई है आगे पीड़ा टाबर दुख पावे मेरे देखियो कौन सा ये माटी कोई मैं बने डूबी गांव की तो ये गांव का आदमी ने मैं दुख पाता
1: देख कौन सकू
0: महामंत्री की बात सब समझ में आने लग रही पूरी बात सुनी सोचो घटा वो तबाह हो कौन गांव रह गयो एक खुद को तो बिन कहो के सेठ जी थे यहाँ करो कल राजसभा का मायना हो थे बटा बात करांगा मामला

0: लो सारो महामंत्री समझ लियो कि सीधो कहो तबाह होगा नहीं नयो राज्यसभा में तबाह बैठा गयो राजा कन राज्यसभा मोटो गयो राजा पूछो जाता है क्या करके आया महामंत्री जी के पत्तो लागो क्या पत्तो राजा
1: बात बता दी बने
0: अ लगे कि मैं जाए और सारी चीज देखे बड़े और देख के मन यहाँ लगे गाँव वाला के लिए दुख की बात को नहीं खुशखबरी की बात है राजा को खुशखबरी कही मैंने जमीन श्रापित होगी अनाज बैठा उगण गुण लाग रही हो फसल लाग रही होनी पानी जहरीलो हो गयो और थ्यागे करे खुशखबरी की बात है यहाँ तो कोई अभी कुएं को पानी दे चाख्या है उसमें तो हो दे जद को उसमें ही हूं मैं कोई विद्वान की एक किताब पढ़ी पर भी किताब के मैंने यहाँ लिखे हो के जब जमीन को पानी है जो को खारो हो जा आसपास के कुआ को पानी जमीन को और जमीन बंजर हो जा तो उसके भी जमीन के नीचे कोई सोने की खान हो उसके तो अपने लिए खुशखबरी है क्योंकि गांव अपने क्षेत्र का महीना हो और बड़ा सही में खान मिल गई तो आपने जो को राज्य भी की वाह वाही है दूसरे राज्य का मैंने बेचांगा और खूब पिसा राव जाऊंगा आप और बढ़िया तरीके से अपने देश की जनता की जगह सेवाएं कर पाऊंगा आज जगह की दिक्कत आ रही है जगह गरीबी में है जगह काम धंधो को नहीं और बढ़िया तरीके से
1: हाँ रोजगार
0: चालक रोजगार मिल लगो तो कोई बात तो सही है तो क्या करना चाहिए करना चाहिए कि जमीन है जी की कब्जा में ले लियो राजा कोई बात सही है काल दिन की या अपना सैनिक का जगह सारा भेज देंगे और जमीन की खुदाई करवाऊंगा जो भी निकलोगे सोनों को ले लेंगे अब बात गुप्तचर के माध्यम से पूगी सेठ जी तक किरोड़ी लाल कर अरबे भी जमीन पर पहले से ही मुंह धोया बैठे बे रात नहीं पूग गया पूरे दल बल के सागर पांच सात दस आदि मैं लेकर खेत की खुदाई चालू कर दी बठी अब महामंत्री तो बेरोही हो का बात होगी तो वो जरूर पुगेगो वो लालची तो है बेबी बीटे में रात में बड़ा पुग गया भटी ला दिया सेठ जी खुदाई करता सोने का लालच का मायने भटई भी पकड़ी और पकड़ के कहे क्या की खुदाई चलन लाग रही गांव का भलाई करने के लिए सोनो काटन लाग रही गांव रानी देगो जब वो कुछ ही गुण बोलियो फिर बात बटा सामने आई फिर भी राजा ने पूरी बात बताई कि यो जमीन है जी की सारी गरीबा से लेके और वो खुद ही काम में लेगो रह गयो व्यापारी वो लंबा मुनाफे की सोच और मैं बेरो पाड़ी मेरा गुप्तचरा जी चीज अडे मिली है जी वजह से वो जो को पानी है जरियो लो शहर का मायने बाने बेचे और पूछा को वो ईश्वर जहर जो कुण रखे और कुण से ज्यादा खरीदारी करी है पिछले एक महीने से तो पत्तो पड़ी है कि गांव को जो मसीहा है जो सेठ जी किरोड़ी लाल जो को गांव आ रहा है सब बड़ा हुई देसी है वो ही सबसे ज्यादा खरीदी है और वो ही जहर जो को गिरवाण लाग रही है और वो ही गांव आ रहा है दिमाग में चीज बांट दी कहो श्राप हो गयो थारे जमीन ने और यहाँ अगर केर भी टेम वो पकड़े गयो और जो राजा है वो भी ना बाद में भी बाद में
1: सजा दी बहुत बढ़िया बात बताई बखत बचेड़ो चलता चलता है ताड़ो मनोरंजन करावा सुनाए मीठी सी लोक रचना।

0: तिलक राज और जयश्री की गायडी ई मीठी सी लोक रचना के सा गई। आज को कार्यक्रम बाता ही चाले उरे ताई फेरू मिलन ताई पंकज भाई ने
1: और मोहन भाई ने
0: जो सीख करा राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाताहीन 40। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गौरबंध।

कार्यक्रम गोरबन सुनहारा सगळा साथियाने किशोर देव तमार की ओर शू मोकळा मोकळा राम राम सा कार्यक्रम पसंद कर आधारित तो कार्यक्रम लेकर हाजिर हाँ। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सुनावा थाना मीठी सी लोक रचना।

कार्यक्रम की शुरुआत में आ मिठी सी लोक रचना पा सुनी नितिन मुकेश की आवाज रमाई ने और इन्हें सुनने चाहिए हमारा लाडला साथी आप सगड़ा। आप हमारा साथी लिखना रहो हिरामणी वर्मा, परसमणी वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, अनोखेलाल वर्मा और आके परिवार का सगड़ा सदस्य दिख रहे हैं दतरंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से। हमारे साथ ही ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षदा देशमुख। आप हमारे साथी हो रघुनाथपुरा गंगानगर से हमारे साथी लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी। आप हमारे साथी हो सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और आंका सगड़ा साथी। कालका शू लिख रहा है शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज। हमारे साथी है गांव जाखोद राजस्थान का हमारा नियमित श्रोता शमुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। बागपत उत्तर प्रदेश संजय ढींगिया, नामन ढींगिया, अपार ढींगिया और आंका सगड़ा साथी। नेपानगर मध्य प्रदेश हमारे साथी है सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। हमारे साथी है गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से हमारे साथी विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव। हमारे साथी है गांव पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से वलकर्ण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद और राजेंद्र के सागर है उमेश और परमिला बंछोर। गांव नथाना पंजाब शू हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। बडिंगखेड़ा पंजाब शू मिंटू टोमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। हमारे साथी है चंडीगढ़ सिटी शू सतीश, अनेजा, बिमला, अनेजा। अस्तुपुरा जिला मऊ शू हमारे साथी है मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर शू आजाद अली अनवर और रिजवाना परवीन और आंका सागर है अब्दुल्ला आजाद। हमारे साथी है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र शू नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़। आप सुन रहे हो आकाशवाणी चुरू शू कार्यक्रम गौरबंद। अब कार्यक्रम की अगली लोकरचना आप सुनोगा मांगीलाल पुजारी और साथी की आवाज कमाएने।

मांगीलाल पुजारी और साथ के आवाज में आलोक रचना पासुनी और इन सुनो चाहे हो मारा साथी आप सगड़ा आप मारा साथी हो लिख रहा हो भंवर सिंह मीणा तन्मय मीणा हमेरी कला झुंझुनू छू महेश जानू बहादुरबाज झुंझुनू छू सुखजिंद्र बुगालिया चिलावा झुंझुनू छू बलजीत कांटीवाल बिदासर झुंझुनू छू राजा नंदवाणी रजत रोहित केशव मुकुल मनीष सुमित साक्षी और किरण नंदवाणी नैसर्ग चुरू छू जगदीश मंडल लिख रहे अभिषेक मंडल के सागे गुदरी बाजार चुरू छू राकेश कुमार दुधवा मीठा चुरू छू अरविंद खरडिया लादरिया चुरू छू छोटी बलिया तालुका करजत से हमारे साथी है अहमद भाई फूलवाले दुखना सदफ जूही इकबाल इमरान अहमद फूलवाले कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हमारे साथी है आसना नसरीन बागवान आसमा परी राबिया आशु अहमद और आंका सगड़ा साथी बटिंडा रोड मंडी डबवाली शु राजेंद्र नारंग अंजू मोहित और तानिया चक 5 एमडी पत्रोड़ा जिला श्रीगंगानगर हमारे साथी है मंगल जनागर श्रीमती रोशनी अंकुर और आंका सागर है डॉक्टर सुनील हमारे साथी है किशनगंज बिहार श्री रविन्द्र मोहनदास आशा देवी गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर श्री विनोद बारासा विशाल विकास रोशनी और शगुन यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र हमारे साथी है संतोष खड़से और विनोद खड़से ज्वारनगर दुर्ग श्यू आरसी कामडे करुणा मीना विपुल और अश्विनी आप हमारे साथी हो डोंगर गांव छत्तीसगढ़ श्यू राष्ट्रपाल गजबीए राधिका अनिष्का और तन्मय बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ श्यू रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिम्पल

कृष्णा कॉलोनी हाशिशू सुभाष योगी सुशील योगी बबू डब्बू और राजू मिगलानी बबीता मिगलानी और आंका सगला साथी शीतला गेट बीकानेर शुमार साथी मोहम्मद शफी खींची मोहम्मद शरीफ मोहम्मद सुजैन नूर फातमा मोहम्मद आजम अकमल हुसैन भियानी अमजद अली खींची और एमसफी मिस्त्री फुलचिनचौली तालुका पंडरपुर से हमारे साथी है जाकिर मुलानी सुमैया सुबान समीर सलमा मुमताज दिलशाद नशीर बानूबी और बादशाह मुलानी हमारे साथी है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश आप सगला सुने आपकी पसंद रहो ओ मिठो सो लोक भजन आप सुन रहे हो आकाशवाणी चुरुशु कार्यक्रम गौरबंद केशव देवता के साथ में ये गीत में आवाज है सीमा मिश्रा और सात्यारी।

अमेठी से लोक रचना भी आपा सुनाए सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज के मायने और कार्यक्रम को आखिरी गीत भी आपा सीमा मिश्रा की ही आवाज में सुनांगा। इन दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइशी प्रकाश है गांव पंचायत सिरसिला फवारा चौक जिला चिरू राजस्थान शु संदीप सिंह सोनगरा प्राची सोमल कार्तिक सचिन चौहान और आका समस्त परिवार आ रहा है। हमारे साथी लिख रहा है कृष्ण कुमार डाभी भूपत कुमार राधा तंवर विक्रम अर्चना और साक्षी लिख रहे गांव टूंकिया तहसील सिंधरी जिला बालोतरा राजस्थान शू हमारे साथी है लिख रहा है ये गीत ने सुनने खातर है हमारा साथी पंजाब शू फाजिलका का साथी भूषण खेड़ा विश्व खेड़ा विशाल लाडी खेड़ा शालिनी खेड़ा और तिवानशी खेड़ा ये गीत ने सुनने चाहिए हमारे साथी आप हो हमारे साथी ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी शू जगदीश धाकड़ नाइमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह और शिवांगी गौरव कविता मानसी अनिल अरोड़ा मिनिस्ट्री वाली रोड नई दिल्ली शू लिख रहे हैं। हमारे साथी है कोहका बिलाई छत्तीसगढ़ शू उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल कुमार अजित कुमार आयुष और नंदनी नमदा ग्राम सुखरी कला शू अमित जंघेल शकुन आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश शू राजेश कुमार वर्मा प्रीति कार्तिक और आर्यन शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ शू हमारे साथी है मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू हमारे साथी है गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब शू सुभाष गोदारा बिमला इंदु पार्वती और हिमांशु गांव पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश शू सत्येंद्र कुमार चंसोली आदर्श सार्थक अलौकिक और आंका सगड़ा साथी बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ शू राजेंद्र रामचंद्र माखीचा काफिर भाई श्रीमती सविता बेबी स्वाति माखीचा माही पूजा छुटकी शरद कुमार डंडवाणी हमारे साथी है लेवई छत्तीसगढ़ शू गुलाबदास मानिकपुरी राजादास और रानी हमारे साथी एकता कॉलोनी रोहतक शू सीताराम कागड़ा बबीता बोत निखिल कागड़ा और तन्वी बोत धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड शू निशार सलमानी नौशाद बेबी आलिया और आयन बाबू उत्तम नगर दिल्ली शू बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका और भानु प्रकाश मालियान सरधना मेरठ शू अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन और मास्टरम जीवीएम जिला मुरादाबाद यूपी शू हमारे साथी है मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह पोटियाकला दुर्ग शू संजय साहू सुजाता शशांक और सीमा हमारे साथी है हरियाणा शू अंकित कागड़ा मोनी कागड़ा प्रिंस बोत और आका सगड़ा साथी नारकली बाजार पंजाब शू सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या भाई सुचा सिंह बसमत रोड पर भणी महाराष्ट्र शू रणजीत काश्कारे गांवकर कंचन सृष्टि और समरजीत गोविंदपुरा निमका थाना राजस्थान शू हमारे साथी है दातार सिंह शेखावत संगीता तुषार और रिंकी शेखावत हमारे साथी है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ शू कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ड्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा और तुलसी रंग सागा है दिशा ये गीत ना सुनना चाहिए हमारे साथी आप भी आप लिख रहे हो लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा शू बिल्लू सिंह चिंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार बरखा योगेंद्र नरेंद्र और निहारिका गांव फ्रांसी हिसार शू राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र संबलपुर कांकेर शू फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान शू मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका मोरटका माफी जिला खंडवा शू हमारे साथी है जगन्नाथ पटेल कमला अंतिम ज्योति शुभम देवी किशन भावना अमन मानस और कनिका पोटियाकला दुर्ग शू संजय साहू सजाता शशांक और सीमा साहू।

ये गीतना सुनना चाहे है हमारे साथ ही लिख रहे हैं शिवकोटी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश राकेश पप्पू सेन श्रीमती निशा सेन ओम धर्मेंद्र कुमारी सपना मुकेश द्वारका बाई मनीषा बाई और आंका सगला साथी बड़वाशी पुष्पेंद्र रावल फूलचंद आठोदे राजेश

मोरे और आंका सकला साथी हमारे साथी है वार्ड नंबर 60 चुरुशु हरिप्रसाद महेंद्र चंद्रकांता पूजा प्रेम श्याम सुंदर सुनीता पंकज पवन धर्मेंद्र रूबी अंजलि प्रतीक्षा खुशहाल आंका परिवार का सकला सदस्य। वार्ड नंबर 60 चुरुशु लिख रहे कमल किशोर माया तमन्ना चंद्र प्रकाश गायत्री नगर चुरुशु मनोज पूर्ण मुकेश निहारिका भरत मम्मी पापा का हमारा साथी है झरिया मोरी चुरुशु महेश मीना गुंजन लवीना।

तो साथियों हो थारी पसंद पर आधारित राजस्थानी लोकगीत और लोक भजना को फरमाइशी कार्यक्रम कोरबंद आज को कार्यक्रम थाने की शोक लागो बताइयो जरूर। फिलहाल ही कार्यक्रम शुरू दो सीख केशव देव तंवर नु फेरू मिलश्या करा राम राम साहब।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरबंद। हम आकाशवाणी चूरू से बोल रहे हैं एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अली अकबर खान से सरोद पर राग पीलू।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अली अकबर खान का सरोद पर राग पीलू। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव

0: डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial scale coal to ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles.